0: जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद के सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी और विश्वास आधारित प्रशासन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है कि भारत एक संपूर्ण दूरसंचार और नियमों, उपकरणों तथा नवाचार को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया सीईओ गोलमेज सम्मेलन में श्री सिंधिया ने देश के विस्तारित डिजिटल तंत्र और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उभर आर्थिक विकास में दूरसंचार की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी, जिससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण द्वार जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ, सहायक प्रोफेसरशिप या पीएचडी के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 मिल सकते हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रूपये विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद के किंग खाले हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है तथा कई घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनमें पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। खेलों में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उधर इंटर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: भक्ति संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत है वंदना।

ईश्वर एक है, उसके कई नाम है, रूप हैं। किसी भी नाम रूप की आराधना जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। शीला वर्मा और विवेक ब्रो में लीजिए, सुनिए ये भक्ति रचना।

यही विनती करें कि वे हर संकट को दूर करें, रक्षा करें, असुरों का नाश करें और भक्तों को अभय और सपना भाटे के स्वरों में सुनिए ये देवी गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने चिंतन। आलेख आदित्य सोनी का है, वाचक स्वर राहुल तिवारी।
1: कर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बहुत बड़ी इमारत कैसे बनती है? क्या वह रातों रात खड़ी हो जाती है? नहीं, उसे बनाने के लिए एक बेहद सावधानी और धैर्य से जोड़ना पड़ता है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में बड़ी सफलता या कामयाबी भी कभी अचानक नहीं मिलती, पर रातों रात अमीर बनने या एक ही दिन में महान बनने का सपना देखते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपकी सोच को बदल देगी और आपको यह समझाएगी कि आपके जीवन के छोटे छोटे बदलाव कितने शक्तिशाली हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक युवक रहता था। सोहन चित्रकारी का बहुत शौकीन था। वह बहुत सुंदर तस्वीरें बनाता था, लेकिन जब भी वह किसी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेता वह हार जाता। सोहन बहुत निराश हो गया। उसे लगता था कि उसमें ही कोई कमी है या उसकी किस्मत ही खराब है। गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में एक प्रख्यात चित्रकार रहते थे, जिन्हें लोग उस्ताद जी कहते थे। सोहन अपना एक कैनवास लेकर जा और रोते हुए बोला, उस्ताद जी, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, पर न तो मेरी पेंटिंग बिकती है और न ही मैं कभी जीत पाता हूं। लगता है मुझमें ही है। उस्ताद जी मुस्कुराए। उन्होंने सोहन की पेंटिंग देखी और कहा, सोहन, तुम्हारा हुनर अच्छा है,

0: जीवन में कोई भी सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि वह रोज किए गए छोटे प्रयासों।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब आपको सुनवा रहे हैं खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मटर की फसल के संदर्भ में जानकारी तृप्ति त्रिवेदी के माध्यम से।
2: किसान भाई नहुन, खेती की बात न मैं आज अपन बात करांगा मटर की खेती की। तो मटर का जो पौधा होइज ओ की अगेती बुआई भी होइज अने सामान्य बुआई भी होइज। सामान्य बुआई को टाइम छे अपनो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक को, अने अगेती बुआई जो छे ओको समय निकली गयो। फिर भी अपना किसान भाई जो छे वो अक्टूबर का पहला सप्ताह में न अभी 4-5 दिन का अंदर ओकी तैयारी करी सकज। ओका लिए अपना का मट्टी कसी चाहिए, एका लिए जिनी मट्टी में से पानी अच्छो से निकली जाए, अने दोमट मट्टी हो या बलुई का में अपना का एक ही अच्छी पैदावार मिली सकज। साथ साथ एक ही जुताई जो छे अपना का खेत में 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि मट्टी जो छे वह भुरभुरी हुई जाए। अने जुताई का समय प्रति एकड़ 8 से 10 टन अपना का सड़ेला गोबर की खाद मिलाई देनू। एका से फायदा ये होएगा कि बीज ने का साथ में जब बीज डालांगा उसका साथ में उनका जैविक उर्वरक जैविक खाद मिली जाएगा, जेका से उनकी वृद्धि उनकी जो बढ़त छे वह फटाफट होएगा। अन अगर अपन बात करा कि कहाँ की किस्म न का अपन लगे सकें, तो जो एक ही मुख्य किस्म न छे काशी नंदिनी, MP3, पेंसिल मटर, अर्किल, पंत मटर 3 अने आजाद P3 ही मटर की किस्म न छे जे का अपन उगाई सकें अपना खेत में। अगर अपन बात करा कि बीज की कितनी कई मात्रा अपना का प्रति एकड़ डालनी चाहिए, प्रति एकड़ पर्याप्त हो। अगर अपन बात करा कि एको बीज दर काई हो न बीज ने को उपचार कसो करना चाहिए, तो सामर्थ्य का लेन 70 से 80 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ अपना का पर्याप्त रहे। अने बीज उपचार की अगर बीज ने का फफूंदी नाशक से उपचारित कर लेना चाहिए जैका से कि ओकी जड़ न गलनी अने अपनो बीज जो छे अच्छा से अंकुरित हुई का अच्छा पौधा अपना का दे। बुआई का समय अपना का ध्यान रखना चाहिए कि अपन जो छे 6 से 10 इंच की दूरी रखा हर पौधा का बीच में। 6 से 10 इंच की दूरी जो अपन लाइन में लगावांगा अपना बीज उनका बीच रखा, अने दुई बीज ने का बीच में लगभग 2 इंच की दूरी अपना का रखनी चाहिए जैका से कि अपना बीज जो छे वो ढंग से अंकुरित होए। खाद की बात करें तो अपन जैविक खाद को महत्व समझाएंगे, तो अपन जैविक खाद उपयोग करांगा जैका से कि अच्छी अपना का फसल मिला। अने अगर सिंचाई की बात करें अपन तो सिंचाई जो छे अपना का 5 से 7 दिन बाद हल्की बुआई का यानी बोई दियो का बाद में 5 से 7 दिन का बाद मौका में हल्की सी अपना का सिंचाई करनी चाहिए जैका से कि नमी बढ़ने देनो है अपना का। अने अगर अरु बात न करा अपन तो कई कई की फसल में 7 से 10 दिन का अंतर पर भी अपन पानी दे सकें। अने फली बनने पर पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देनो है, तब लगातार अपना का पानी की व्यवस्था वहाँ पर रखनो है। अने खरपतवार नहीं सबसे बढ़िया तो रहे कि भाई निराई गुड़ाई कर दो, अने हाथ से जो छे खरपतवारों को उठाकर निकाल दो। अने सबसे बड़ी जो अपन सावधानी रखी सकें वया छे कि बीज न कर जब अपन बोवाएं उस समय ये ध्यान रखा कि मटर का बीज का साथ में कई अरु बीजों का साथ में अपन ने डाल नहीं दिया हुए तो आधा खरपतवार तो अपना वहाँ नियंत्रित हो जाएगा। फिर भी कई का खरपतवार साथ में उगी जाए तो उनका अपन निराई गुड़ाई से हटा सकें। न कभी हो तब ही अपना का खरपतवार नाशक को उपयोग करना चाहिए अपना कृषि वैज्ञानिक की सलाह का अनुसार जो अपनी खेती की बात न से। तो भाई बहनों मटर की अच्छी फसल आए इन्हीं शुभकामना का साथ तृप्ति बहन की सभी किसान भाई का राम राम।
1: आप सुन रहे थे खेती की बातें कार्यक्रम और इसमें आपको सुनवा रहे थे मटर की खेती के संदर्भ में जानकारी। स्वर ये थे, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

बैठी राजा दशरथ की गुहार सुन रही हैं। मुंह मोड़कर हंसती रानी कैकई बोली, कभी आपने दो वरदान देने को कहा था, किंतु अब तो उनके मिलने में भी संदेह है। निष्कलुष हृदय राजा ने अभी मांगा ही नहीं। रघुकुल में तो सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। कैकई ने वर मांगे, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से

0: पंडित ब्रज मोहन का वायलिन वादन राग गुजरी तोड़ी। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रातः 10 बजे अनुप्रसारित की जाएगी। प्रातः 10:05 पर आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। और अब आपको बता दें, हमारी दिन की सभा में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में प्रातः 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने। 12 बजे फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं। 12:30 बजे कार्यक्रम संग्रहालय से आप सुनेंगे। दिन में 1 बजे आप सुन सकेंगे। और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे आरंभिक चर्चा के अंतर्गत ऑनलाइन शॉपिंग में मिशन लाइफ के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भेंट वार्ता सुनवाएंगे। महिला सुरक्षा कानून और जागरूकता पूजा भोगले अधिवक्ता से ये जानकारी। इसके साथ ही मी टाइम के अंतर्गत डिजिटल डिजाइन महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का एक बेहतर जरिया, और ये जानना भी जरूरी। वित्तीय साक्षरता भी जरूरी है महिलाओं के लिए। और हेल्थ टिप्स में आप जानेंगे व्रत उपवास के दौरान रखें अपनी सेहत का ध्यान। लोक संगीत का समय रहेगा दिन में 1:30 बजे और 2 बजे आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। चित्रपट संगीत आप सुनेंगे दिन में 2:30 बजे। और अब आपको बता दें, हमारी सांधिकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम संध्या 5 बजे आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में आरंभिक चर्चा में आप सुनेंगे विश्व डाक दिवस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में जानकारी। आज का क्रम में साप्ताहिक विज्ञान और खेल गतिविधियां आप सुन सकेंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा संध्या 5:45 पर। NCERT ओम सुनेंगे संध्या 6 बजे। 6:30 पर सुनिएगा सुगम संगीत और कलाकार होंगे ताहिरा सैयद। लोक संगीत में मानसिंह भोंदिया और साथियों के गाए लोकगीत आप सुनेंगे 6:45 पर। 7:20 पर सुनिएगा खेती गृहस्थी कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में आज की बात में ई नाम के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। वार्ता सुनिएगा रबी फसलों की बुआई पूर्व की तैयारियों और बीज उपचार के बारे में। इसके साथ ही लोक संगीत मंडी के भाव मौसम की जानकारी भी आप सुन सकेंगे खेती गृहस्थी कार्यक्रम में। रात्रि 8 बजे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:35 पर। रात्रि 9:15 पर चित्र गीत। और रात्रि 9:30 बजे मन भावी संगीत में आप सुनेंगे पंडित ब्रजमोहन बमराले का गायन गोरख कल्याण। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशी संस्कृत में समाचार और उसके बाद 7 बजे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां महिला बाल विकास विभागीय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रे सहभागं करिष्यति। ह्यः आरब्धे अस्मिन् द्विदिवसीय सम्मेलने सर्वेषां राज्यानां महिला बाल विकास क्षेत्रैः सम्बद्धानां राजनीतिक नेतृणां अधिकारिणां च सहभागिता भवति। प्रधानमन्त्रिणा परिकल्पितानां विभागीय शिखर सम्मेलनानां शिखायाः इदं द्वितीयं सम्मेलनमस्ति। अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं सहकारी संघ व्यवस्थायाः सुदृढीकरणं राष्ट्रिय प्राथमिकतानां पूर्तये सामूहिक दायित्व भावनाया राज्ययोः परस्पर सहकारेण कार्य परिणामानां त्वरित साधनमस्ति। सम्मेलने चतुर्षु प्रमुख पोषणं प्रारंभिक शिक्षा बाल संरक्षणं तथा महिलानां सुरक्षा सशक्तीकरणञ्च। वस्तु सेवा नवदिल्ल्यां सम्पन्ने स्वकीयस्य 75वें उपवेशने करदातृभ्यः अनुपालन प्रक्रियां सरलीयाः अनुमोदिताः। एतेषु निर्णयेषु वस्तु सेवा कर व्यवस्थायाः अन्तर्गतं कराधिकारिणां निगडीकरणं अधिकाराणां निरसनं तथा अभियोजनस्य सीमायाः 1 कोटि रूप्यकेभ्यः 5 कोटि रूप्यकाणि यावत्

0: सतर्काः भवेयुः आवश्यकतायां च गृहेषु एव तिष्ठेयुः इति दूतावासेन परामर्शः प्रदत्तः भारतीयानां वार्तानां च सामाजिक माध्यमेषु प्रसारणं पुनः प्रसारणं च न कुर्युः इति दूतावासेन अनुरोधिताः स्थानीयाधिकारिभिः आधिकारिक माध्यमैः प्रसारितानां निर्देशानां पालनमपि कर्तुं तान् सुहायता केन्द्रस्य अहोरात्रम् उपलब्धा दूरभाष सहायता सेवा निःशुल्क दूरभाष संख्यायाम् 8002471 उपलब्धा अस्ति। क्रिकेट क्रीडायां भारतम् अद्य रांची नगरे वेस्ट इंडीज दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र के जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में यह दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करने की भावना बढ़ाना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद के अनुमोदित कर सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि सुधार जीएसटी को अधिक कुशल बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी। इससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल किए जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औद्योगिक अधिसूचना जारी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ, सहायक प्रोफेसर या पीएचडी के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic पर लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिले हैं। ये राशि एक्सिस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल 55,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए। सबसे अधिक 7,16,00,000 रुपए कृषि बीज क्षेत्र से प्राप्त। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के उनके फार्म हाउस नानाची वाड़ी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। अंतिम संस्कार से पहले दिवंगत अभिनेता को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगाने की घोषणा की है। इनमें भारतीय कंपनियां इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ संघीय जांच के बाद ये कदम उठाया गया है।

0: हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर नए इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस, विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी। इस बीच रियाद में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटों सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-2471-234। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल जी को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन ए आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

मेल कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव और 8:30 से 9 के बीच सजीव आपका पत्र कार्यक्रम। सूचना समाप्त हुई।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज महिला एवं बाल विकास सम्मेलन के समापन सत्र। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज हरदा में उद्यमियों, किसानों और आम लोगों से संवाद करेंगे। मुंबई रोड शो में मध्य प्रदेश को मिले करीब 90,000 करोड़ रुपए के निवेश। और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने और नए पदों की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकास पर आयोजित 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सम्मेलन में सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाकर सहकारी संघवाद को मजबूत करना और योजनाओं के बेहतर

व्यवस्था सरल, पारदर्शी और कारोबार के अनुकूल बनेगी। बैठक में कर दरों की प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर जोर दिया गया। कम जोखिम वाले जीएसटी पंजीकरण को 3 कार्य दिवस में मंजूरी देने और रिफंड की समय सीमा 15 से घटाकर 10 दिन करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज हरदा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे उद्यमियों, युवाओं, किसानों और आम लोगों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री जिले की समीक्षा बैठक भी लेंगे और समाधान ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करेंगे। कार्यक्रम में जिले के विकास कार्यों और आम लोगों की समस्याओं पर चर्चा होगी।

0: करीब 22,000 करोड़। एवरसोर्स कैपिटल ने 3,500 करोड़ रुपए के निवेश की जानकारी दी। वहीं मीरा कॉटन ने 2,000 करोड़, डी एन टेक्नोलॉजीज ने ग्वालियर में 200 करोड़ रुपए की दूर संचार उपकरण लगाई इकाई लगाने का प्रस्ताव रखा।
1: फार्मा सेक्टर में भी हमारे पास सन फार्मा, इफ्का, ऐसी बड़ी बड़ी, ये सब मिलाकर के लगभग 1400 करोड़ के निवेश इनके माने वाले हैं। राजस्थान के साथ 2 प्रस्ताव हमारे पहले से चल रहे हैं, तीसरे प्रस्ताव पे भी हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे राज्यों के बीच परस्पर सौहार्दों के बलबूते पर एक दूसरे के राज्य में एक दूसरे के नागरिकों की बेहतरी के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के और अच्छा उपयोग करने के लिए, इसकी समृद्धि में हम सब कदम से कदम मिलाकर चलेंगे।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल कहा कि भारत दूर संचार के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने और नई तकनीक के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान आयोजित सीईओ गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने सरकार और उद्योग जगत के बीच साझेदारी पर जोर दिया। बैठक में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, आधुनिक नेटवर्क और अगली पीढ़ी की संचार तकनीकों पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की बिक्री पर मार्जिन की अधिकतम सीमा एमआरपी का 30% तय की है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक इस फैसले से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आ सकती है और सालाना करीब 2,500 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण दवाओं की सूची तय होने के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 60 में कल राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने करीब 42 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसमें वल्लभ नगर से सौम्य विहार तक 37 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड बनाई जाएगी, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।

जोड़ने में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक में स्विट्जरलैंड के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत में डाक व्यवस्था का इतिहास प्राचीन है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के मुकाबले में जीत दर्ज कर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना रखी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन आज आगरमालवा स्थित नवीन कृषि उपज मंडी में किया जाएगा। महोत्सव में जेल में पतंजलि योगपीठ के सहयोग से 3 दिवसीय योग शिविर संपन्न हुआ। खंडवा में जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के कार्य को व्यवस्थित रूप से संपादित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सतना में कार्य में लापरवाही बरते जाने पर अपर कलेक्टर ने जिले के परीक्षाधीन पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। झाबुआ जिले के शिक्षा केंद्र में प्रतिनियुक्ति के माध्यम से 10 पदों की पूर्ति की जाएगी। नर्मदापुरम जिले में उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूक करने और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एक सार्थक पहल शुरू की है। जबलपुर में टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ज्वाइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ टीम का शुभारंभ कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ जेपी नड्डा ने भारत मंडपम नई दिल्ली से किया। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय डिंडौरी में सेवा संकल्प अभियान के तहत छात्र छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। सागर में शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के गंभीर मामले में कलेक्टर ने जिले के 12 पटवारियों को तत्काल लंबित कर दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मीडियम वेव 462.96 मीटर और सुन रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं। आइए सुने साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा।
0: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा।
1: श्रोताओं नमस्कार। इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम के साथ आपका मित्र मुकाम सिंह चौहान। श्रोताओं, अश्विन मास की नवरात्रि का प्रारंभ 11 अक्टूबर से शुरू होकर 19 अक्टूबर के साथ रहेगा, जबकि 20 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा मनाया जाएगा। इस बार नवमी और उत्सव का आनंद और अधिक लंबा हो गया है। नवरात्रि का उत्सव हमेशा की तरह अद्भुत रहता है। यहाँ एक ओर आराधना की गूंज सुनाई देगी तो दूसरी ओर गरबा पंडालों में युवाओं का उत्साह देखते ही बनेगा। भक्ति और आराधना का केंद्र बने प्रमुख मंदिर नवरात्रि के 9 दिनों तक इंदौर के मंदिरों में आस्था का जन सैलाब उमड़ेगा।
2: इंदौर के प्रमुख माँ भगवती के मंदिरों के अंतर्गत विजयासन माता मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, हर सिद्धि मंदिर, महाकाली मंदिर के साथ ही गायत्री शक्ति पीठ और अन्य सभी छोटे बड़े मंदिरों में हजारों भक्त दर्शन पूजा पाठ के निमित्त लगातार पहुंच रहे हैं। यहां दर्शनार्थियों

0: के सुलभ सुगम दर्शनों की विशेष व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ माता शक्ति के देश के प्रमुख शक्तिपीठों की प्रतिकृतियां बनाई गई है, जहाँ भक्तों की भारी भीड़ इस बात का संकेत है कि हमारा सांस्कृतिक स्वरूप कितना एकाकार है और हम इसे या देवी सर्वभूतेषु मां से देखते हैं, पूजते हैं। हम नवरात्र में व्रत इसलिए करते हैं कि अपने भीतर की शक्ति संयम और नियम से सुरक्षित हो, व्यय ना हो। पूरी सृष्टि में जो ऊर्जा का प्रवाह आ रहा है उसे अपने भीतर रखने के लिए भी पात्र की स्वच्छता आवश्यक है। व्रत पूजन में गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य का अर्पण इसी भाव से होता है कि इस संसार में जो कुछ सुंदर है वह सब माँ तुम्हारा ही है। पुष्प के रूप में पुष्प की तरह खिला हुआ प्रसन्न आकाश अर्पित होता है। धूप के रूप में सर्वशोधक वायु तत्व अर्पित होता है। दीप के रूप में अग्नि तत्व अर्पित होता है और नैवेद्य के रूप में जल का अमृत अर्पित होता है। यह अर्पण इस भाव से होता है कि सीमित परिधि में रहने वाला तत्व अनंत असीम में निहित तत्व को अर्पित हो जाए। अगर हम नवरात्र को वैज्ञानिक या योग के नजरिए से देखें तो सिद्धदात्री ऊर्जा का वह स्तर है जो उच्चतम अवस्था तक पहुंचाती है। योग शिति सहस्त्रार चक्र यानी सिर के शीर्ष पर स्थित सातवां चक्र से जुड़ी मानी जाती है। जब यह चक्र जागृत होता है शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है और वह दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त कराती है। सिद्धियाँ कोई चमत्कार मन की चेतना के गहरे नियंत्रण और एकाग्रता से उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ हैं। हमारे इन पर्वों की महत्ता पर प्रकाश डाल रहे हैं सुप्रसिद्ध अध्यात्मवेत्ता और योगाचारी
1: डॉक्टर

0: पर प्रकाश डाल रहे हैं सुप्रसिद्ध अध्यात्मवेत्ता और योगाचारी
1: डॉक्टर ओमानंद गुरु जी। और आज बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है कि नवरात्रि महोत्सव और अब इसके अंदर दशहरा भी सामने आ रहा है,

वह है जिसने सबको जन्म दिया है, सिर्फ मनुष्य मात्र को जन्म दिया गया है कि वहाँ अपने भीतर हम पहुँचें, और भीतर पहुँचने का द्वार है हम

साधना के द्वारा भीतर अपने साध्य के साथ जुड़ जाए, शक्ति के साथ जुड़ेगा तो उसके भीतर उसके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं, सारे दुख स्वतः अपने आप ही मुक्त होता जाएगा, उनसे उनसे वह शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए एक प्रकार से महाकवच का रूप होता है शक्ति का रूप, जिसके द्वारा हम उपासना करते हैं और हमारे अपने जीवन को शुद्ध बुद्ध और मुक्त रूप में हम जीवन को पूर्णता के रूप में जीते हैं। और दशहरे के दिन निश्चित रूप से सत्चित आनंद, जो राम है वो भीतर है, वहाँ सच्चा विश्राम है, विश्व अलग हो गया और राम रह गए, यही सच्चा आराम है। दशहरे के दिन उत्सव के रूप में मनाएं और भीतर अपनी सारी नेगेटिविटीज को मुक्त करें और आनंद रूप में यही शुभकामनाएं और ढेरों आशीर्वाद।

मध्य प्रदेश की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी इंदौर में आधुनिकता और उत्साह का संगम आपको देखने को मिलेगा भव्य गरबा आयोजनों में। इंदौर का गरबा अपने जोश और भव्यता के लिए यहाँ पर आपको आधुनिक गरबा नाइट्स में संगीत, शानदार लाइटिंग और लजीज फूड स्टॉल्स का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। ऊपर नृत्य को प्राथमिकता दी जाती है। बड़े समूहों में परिवार और मित्र एक साथ यहाँ शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में गरबे का आनंद ले सके, सतर्कता भी जरूरी है। गरबे की इस धूम के बीच साइबर सुरक्षा को लेकर सावधान रहना भी बेहद आवश्यक है। इन दिनों सोशल मीडिया पर रेंट ए गरबा पार्टी का एक नया ट्रेंड और स्कैम तेजी से फैल रहा है। साइबर ठग आकर्षक विज्ञापनों के जरिए गरबा पार्टनर, मैचिंग आउटफिट

और लेट नाइट कैब सर्विस का ऑफर दे रहे हैं। बुकिंग के नाम पर वे एडवांस पेमेंट या फेक यूपीआई लिंक भेजकर लोगों के बैंक खाते खाली कर रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि गरबा पास या किसी भी सेवा की बुकिंग केवल अधिकृत और वेरीफाइड आयोजकों से ही की जाए। नवरात्रि का यह पर्व केवल नृत्य और संगीत का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, साव और सकारात्मक ऊर्जा के संचार का अवसर है। अपनी पारंपरिक जड़ों और आधुनिक उल्लास के साथ इंदौर शहर इस वर्ष भी माता के स्वागत पूरी तरह तैयार है।

श्रोताओं, विश्व डाक दिवस की शुरुआत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपीयू के सम्मेलन से हुई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं यूपीयू की स्थापना आज ही के दिन 1874 स्विट्जरलैंड के बर्न में हुई थी, और हमारा भारत 1876 में इस यूनियन का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश था। ये तो हुई जज्बातों की बात करें तो चिट्ठियां महज कागज का टुकड़ा नहीं थी, वो किसी की माँ का इंतजार थी, किसी फौजी बेटे का प्यार थी, तो किसी की पहली तनख्वाह का मनी ऑर्डर भी। मुझे याद आता है कि बचपन में जब डाकिया साइकिल की घंटी बजाता था तो पूरे घर में एक हलचल मच जाती थी, डाकिया आया है। यह वाक्य किसी त्योहार से कम नहीं होता। लोग डाकिये को पानी पिलाते थे, उसके साथ सुख दुख बांटते थे। वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, परिवार का हिस्सा होता था।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: और उन चिट्ठियों को सहज कर रखना संदूक के किसी कोने में, पुरानी साड़ियों के बीच या किसी किताब के पन्नों में। जब भी मन उदास होता, लोग उन चिट्ठियों को निकालकर फिर पढ़ लेते थे। हर बार पढ़ने पर लगता था जैसे भेजने वाला सामने बैठकर बातें कर रहा हो। चिट्ठियों का महत्व सिर्फ आम आदमी तक सीमित नहीं था। इतिहास गवाह है कि चिट्ठियों ने क्रांतियां लाई है और पीढ़ियों को राह दिखाई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल से अपनी बेटी इंदिरा को लिखे गए पत्र, पिता के पत्र पुत्री के नाम, आज भी साहित्य और ज्ञान का अद्भुत खजाना माना जाता है। महात्मा गांधी जो रोजाना दर्जनों पत्र अपने हाथों से लिखते थे, उनके पत्रों ने पूरे देश को आजादी की लड़ाई में एक सूत्र में पिरो दिया था। अब आप ही सोचिए, क्या वो असर एक ईमेल या 140 कैरेक्टर के ट्वीट में आ सकता है? शायद नहीं। हमें यह भी मानना होगा कि समय के साथ चीजें बदलती हैं। आज भले ही हम निजी तौर पर चिट्ठियां कम लिखते हों, लेकिन भारतीय डाक विभाग और वैश्विक डाक व्यवस्था आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ई कॉमर्स से लेकर गांव-गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने में इंडिया पोस्ट आज भी सबसे आगे है।

पोस्ट ऑफिस आज सिर्फ चिट्ठी पत्री तक सीमित नहीं, पोस्ट पेमेंट बैंक, पासपोर्ट सेवाएं, आधार अपडेशन और न जाने कितनी ही सुविधाएं आज डाकघरों में उपलब्ध हैं। डाकिये के हाथ में अब थैले के साथ साथ स्मार्टफोन भी आ गया है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें एक बार फिर से पेन और कागज उठाना चाहिए। क्यों ना आज विश्व डाक दिवस के अवसर पर हम अपने किसी पुराने दोस्त, अपने माता पिता या अपने किसी शिक्षक को एक छोटी सी चिट्ठी लिखें, और यकीनन जब उन्हें बिना किसी उम्मीद के आपके हाथ की लिखी है वह चिट्ठी मिलेगी तो उनके चेहरे की मुस्कान दुनिया की किसी भी इमोजी से ज्यादा खूबसूरत होगी।

इसी वादे के साथ कि आज हम सब एक चिट्ठी जरूर लिखेंगे, हमारे इस कार्यक्रम को विराम देने का वक्त आ गया है। जाते जाते मशहूर शायर गुलजार साहब की वो पंक्तियां याद आती है, किताबों से कभी गुजरते थे जो, अब सिर्फ स्क्रीन पर उंगलियां फिसलती है, मगर जो बात उन स्याही में भीगे लफ्जों में थी, वो इन चमकते अक्षरों में कहां मिलती है।

अभी आप सुन रहे थे सुनहरे पल कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और

0: और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
2: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
3: दूर दूराज गांव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़कें, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गांव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गांव की महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
2: ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही हैं। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है तो दूसरी ओर सीमावर्ती गाँवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गाँवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गाँवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशीय हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के एमआरपी में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है।

0: खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
1: हूती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-247-1234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एससीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैम्प जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आएं, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आएं देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रूपये की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हुई चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रूपये से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत

0: नमस्कार श्रोताओं, आपका पत्र कार्यक्रम के साथ मैं मुकाम सिंह चौहान
1: और मैं सिद्धार्थ भूषण,
0: आप सभी को हमारा
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्र कार्यक्रम में आज परिवर्तित समय के साथ, क्योंकि आज से अब ये 8:30 से 9 के बीच में आपके बीच में आएगा और आपके ढेर सारे जो ईमेल पत्र हैं वो हमें प्राप्त हो चुके हैं। बहुत सारे श्रोता अभी भी हमें शायद ईमेल पत्र कर रहे होंगे, लेकिन सिद्धार्थ जी, हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिन्हें हमारे श्रोता लगातार सुन रहे हैं और हमें प्रतिक्रियाएं भेज रहे हैं।
1: बिल्कुल मुकाम जी, प्रतिक्रियाएं ही हमारा एक दिशा सूचक है कि हमें किस ओर जाना है, किस तरीके के कार्यक्रम करने हैं और उनके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें रखनी हैं।
0: जी बिल्कुल, तो चूंकि अब हमारे पास समय कम रहता है, अब ये आधे घंटे का रहेगा, इसलिए हम फटाफट हमारे श्रोताओं की ईमेल पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये पहला ईमेल प्राप्त हुआ है हुकुम चंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, के पी एस चौहान, दीपक सचिन कटारिया, कृष्णा विराज, अर्नव काव्यांशी, कृतिका और प्रभा कटारिया का। और ये लिखते हैं कि आदरणीय दोनों प्रस्तुतकर्ताओं को नमस्कार, आने वाले सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। 30 सितंबर को आपका पत्र कार्यक्रम सुना, प्रस्तुति आदरणीय असीम कैथवा जी और मुकाम सिंह चौहान की रही। इस कार्यक्रम में लगभग 23 पत्रों को शामिल किया गया, कार्यक्रम को बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण बना दिया गया। इसी कार्यक्रम में हमें 4 अक्टूबर से होने वाले परिवर्तन के विषय में अवगत कराया गया। हम श्रोताओं की बहुत दिनों से मांग यही रही है कि मनभावन कार्यक्रम का ईमेल आईडी अगर बन जाए तो हम श्रोताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, कृपया इस सुझाव पर भी अमल करने का प्रयास करें। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम सुना। इस कार्यक्रम में गांधी जी सत्य और अहिंसा का संदेश दिया और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया गया। शास्त्री जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ सुनने को मिला। संझा पर्व के संदर्भ में भी जानकारी मिली, मालवा की लोक कला के विषय में डॉक्टर सतीश जी ने जिस प्रकार से संझा पर्व के बारे में जानकारी दी वो हमें बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी लगी। लता मंगेशकर जी के जन्मदिन पर लता सम्मान अलंकरण समारोह पर केंद्रित जो रिपोर्ट है वो भी हमें सुनने को मिली, हमें बहुत अच्छा लगा। 2 अक्टूबर को सुनहरे पल कार्यक्रम हमने सुने, विजया जैन ने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था। 3 अक्टूबर को कार्यक्रम सुनहरे पल सुना और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था वंदना तिवारी ने और एक से बढ़कर एक गीतों का समावेश किया, इसलिए सारे कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए प्रस्तुतकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ये पूरी टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि हमने इतने विविध प्रोग्राम आपको प्रस्तुत किए। और जैसा कि आपने उल्लेख भी किया कि स्वर कोकिला जी के जन्मदिवस पर जो हमने टीवी रिपोर्ट प्रस्तुत करी आपको पसंद आई, तो इस तरीके के कार्यक्रम हम लाते रहते हैं। और जहाँ तक मन भावन के ईमेल के सृजन का

0: आपने हमें सुझाव दिया, तो हम श्रोताओं के सुझाव पर बिल्कुल विचार करते हैं और उसी तरीके से हम काम करते हैं। अभी क्या है कि काफ़ी कार्यक्रम हैं जिनमें ईमेल के द्वारा पत्र मंगाए जा रहे हैं, तो कुछ कार्यक्रम हमने चिट्ठियों के माध्यम से रखे हुए हैं, क्योंकि चिट्ठियाँ भी हमें मिलती हैं। अगर हम सिर्फ ईमेल रखेंगे तो चिट्ठियाँ आना हमें बंद हो जाएंगी, जो कि काफ़ी
1: बिल्कुल
0: श्रोता हमें लिखते आए हैं।
1: जी,
0: तो उस पर हम बिल्कुल अमल करेंगे, विचार करेंगे और प्रयास भी करेंगे।
1: बिल्कुल। एक और ईमेल हमें प्राप्त हुआ है एरोड्रम रोड सोमानी नगर इंदौर से, बी आर नामदेव, राजश्री रौनक, रोशनी धीरज और दिव्यांशी का। और ये लिख रहे हैं कि सिद्धार्थ जी और मुकाम जी को नमस्कार, हम विविध भारती और आकाशवाणी इंदौर के नियमित श्रोता हैं, लगातार सुनते हैं और रात के 11 बजे तक हम सारे कार्यक्रम सुनते हैं। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आता है, इसमें स्वास्थ्य परक जानकारी दी जाती है और मन भावन, युवाणी और अन्य कार्यक्रम भी हमें बहुत पसंद आते हैं। और अच्छी प्रस्तुति के लिए सभी प्रस्तुतकर्ताओं को साधुवाद।
0: आपके प्रोत्साहन के लिए आभार। कार्यक्रम की सफलता का श्रेय पूरी टीम को ही जाता है।
1: बिल्कुल। एक और ईमेल हमें दिख रहा है और ये ईमेल आया है कंवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली और उनके परिवार के सदस्यों का। ये लिखते हैं कि सर्वप्रथम तो आप सभी को शारदीय नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी शुभकामनाएं।
1: 11 अक्टूबर 2026 को हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम आपका पत्र अपने सफलता के 1 वर्ष पूर्ण कर दूसरे वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। इस अवसर पर आकाशवाणी परिवारजनों व श्रोताओं को अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है, हमारे श्रोताओं को याद है कि पिछली बार कब प्रोग्राम शुरू हुआ था और 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, 1 वर्ष कैसे बीत जाता है साथ साथ में पता ही नहीं चलता। और आपके स्नेह एवं प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आगे लिख रहे हैं कि 30 सितंबर को सुबह 8:30 बजे फिल्म संगीत में निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी के जन्मदिन पर विशेष प्रस्तुति बेहद पसंद आई। उम्दा प्रस्तुति के लिए मुकाम सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 1 अक्टूबर को साहित्यिकी के कार्यक्रम के अंतर्गत सुरेश रायकवार की कहानी मार्गदर्शक सुनी, प्रेरणास्प्रद लगी। इसी दिन सायंकाल 5:45 से रात्रि 8:35 और 9:15 पर फिल्म संगीत के अंतर्गत महान हस्तियों संगीतकार सचिन देव बर्मन, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के गीतों को सुनवाया गया। सभी गीतों का चयन मनोरंजक लगा। तीनों कार्यक्रमों की लाजवाब प्रस्तुति के लिए अमृता जी को धन्यवाद। और 4 अक्टूबर को प्रातः 7:20 पर योग निरोग कार्यक्रम सुना। योग प्रशिक्षक अवंतिका सोनी से मुकाम सिंह चौहान की विस्तृत चर्चा स्वास्थ्यप्रद लगी। विषय था योग के माध्यम से मानसिक बीमारियों का निवारण कैसे करें। इसी दिन सुबह 11 बजे विविध भारती इंदौर से हमारे मेहमान के क्रम में कर्नल डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा से मुकाम सिंह जी की विस्तृत चर्चा रोचक लगी। 5 अक्टूबर को गुड मॉर्निंग इंदौर के अंतर्गत विश्व वास्तु दिवस पर प्रकाश परांजपे से, वन्य जीव सप्ताह पर समाज सेवी लेखिका डॉक्टर दीपा जी से तथा विश्व शिक्षक दिवस पर सुनील साहू से प्रीति जोशी जी की विस्तृत बातचीत मनोरंजक लगी। इसी दिन सुबह सुनहरे पल कार्यक्रम, जो कि माजिदा खान ने रूठना मनाना शीर्षक से गीतों को सुनवाकर आनंद ला दिया। 6 अक्टूबर को प्रातः विविधा के अंतर्गत वरिष्ठ साहित्यकार कवयित्री ज्योति जैन से मुकाम सिंह जी की विस्तृत साहित्यिक गतिविधियों पर केंद्रित ये भेंटवार्ता बहुत पसंद आई। और 7 अक्टूबर को रात्रि के 10 बजे प्रसारित नाटक खामोश सच सुना, बहुत पसंद आया। सभी पात्रों का अभिनय मन को भा गया।
0: कार्यक्रमों की सराहना और प्रोत्साहन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रयास श्रोताओं तक गुणवत्तापूर्वक और प्रभावी कार्यक्रम पहुंचाना है। आपकी सकारात्मक प्रक्रिया और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। धन्यवाद।
1: बिल्कुल, लगातार हमें ईमेल हमारे श्रोताओं के पत्र प्राप्त हो रहे हैं और ये है छीपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री, अयुब खत्री और यूसुफ खत्री का। और ये लिख रहे हैं कि 30 सितंबर को आपका पत्र कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आया और इस दिन MH हॉटलाइन कार्यक्रम को प्रसारित किया गया था। ये कार्यक्रम भी अच्छा लगा, गीत अच्छे सुनने को मिले। 1 अक्टूबर को मन भावन कार्यक्रम शालिनी जी ने प्रस्तुत किया था। गीतों का चयन और खतों को अच्छे से शामिल किया गया। 2 अक्टूबर को सुनहरे पल गांधी जयंती पर जो प्रस्तुत किया गया था, विजया जैन ने इसे प्रस्तुत किया था, बहुत लाजवाब था, अच्छा लगा। 3 अक्टूबर को सुनहरे पल कार्यक्रम हमें अच्छा लगा, 4 अक्टूबर

0: को MH हॉटलाइन कार्यक्रम भी हमने सुना। इस तरह से हम सारे कार्यक्रम सुन रहे हैं और आप सभी की मेहनत इन कार्यक्रमों में दिख रही है।
1: आपकी सराहना हमारे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है। कार्यक्रम की गुणवत्ता और प्रसारण के स्तर को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता हमेशा रही है और आपके प्रोत्साहन से हमें निरंतर बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहती है, तो खत्री परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, एक और पत्र है जमुना नगर जुम्मा नगर खंडवा से ही, और लिखने वाले हैं अल्तमश समीना मुदस्सर फिरदोस हुसैन और लाला अफसाना लिख रहे हैं कि आपका पत्र कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं को गुड मॉर्निंग। कल के सितारे बच्चे हमारे कार्यक्रम हम बच्चों को बहुत पसंद आता है। वंदना तिवारी ने सुनहरे पल कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, इसके साथ ही माजिदा खान के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम भी हमें बहुत अच्छे लगे। और प्यारे प्यारे मुकाम भैया जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत नमस्कार, और आपके कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आते हैं और हम नियमित रूप से आपके सभी कार्यक्रम सुनते हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं।
1: आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तल्लीनता से हमारे कार्यक्रमों को सुना, उनकी समीक्षा की, हमारे लिए सराहनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग एवं प्रोत्साहन के लिए।
0: बिल्कुल, लगातार ईमेल हमें प्राप्त हो रहे हैं और ये अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है पालदाना का इंदौर से, हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। ये लिखते हैं कि पिछले दिनों आपके यहाँ से योग ट्रेनर से जो बातचीत की गई थी वो बहुत ही कारगर लगी। इसमें उनके बारे में जो बताया गया वो भी बहुत अच्छा लगा, और एक ख़ास बात और अच्छी लगी कि उन्होंने अस्पताल में जाँच करवाई थी तो उन्हें कुछ समस्या आई थी लेकिन उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और योग करना शुरू कर दिया, और फिर बाद में जांच करवाई तो वो समस्या दूर हो गई। यानी योग उनके लिए कितना उपयोगी साबित हुआ ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। दिनांक 7 अक्टूबर को MH हॉटलाइन का क्या कहने, बहुत ही सुपर हिट प्रस्तुति दी गई और अलग अलग श्रोताओं से बहुत ही दिलचस्प बातें की गई, और बातों को सुनते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुमूल्य प्रतिक्रिया दी, और आशा है कि आगे भी हम इसी प्रकार से आपकी अपेक्षाओं पर खड़े उतरेंगे।
0: बिल्कुल, अगला ईमेल है लाबरिया भैरू इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल केतन और बामनिया परिवार का। ये लिखते हैं कि आपका पत्र प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मोदी जी आपके केंद्र से जिस प्रकार कार्यक्रमों में परिवर्तन किया गया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता थी जो कि वर्तमान में पूरी कर दी गई, परंतु MH हॉटलाइन को सप्ताह में मात्र एक दिन ही रखा जाए क्योंकि लगातार प्रसारण होने से कार्यक्रम की रोचकता बहुत कम हो जाती है, यह मेरा सुझाव है। और जिस प्रकार आपका पत्र कार्यक्रम को बुधवार के स्थान पर शुक्रवार को प्रस्तुत किया जा रहा है, निर्णय लिया बहुत स्वागत योग्य कदम है। इस कार्यक्रम को सुबह के समय नहीं सुनने वाले 8:30 बजे सुन सकेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि अधिक से अधिक श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़ सकेंगे।
1: जी, आपके ही द्वारा दी गई सुझावों के कारण हमने ये किया है ये परिवर्तन, और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है मुकाम जी।
0: जी,
1: और वो ज़रूरी भी है, नहीं तो चीज़ें ऐसा लगता है कि एक नियमित समय से होती हैं। इवन अगर हम देखें तो सूरज का उगना भी अलग अलग समय पर होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो परिवर्तन तो नियम है, उसी श्रृंखला में हमने ये परिवर्तन किए हैं। आपके द्वारा दिए गए सुझावों के ऊपर हमने अमल किया है और हम चाहेंगे कि आप हमें इसी तरीके से सकारात्मक दिशा देते रहें।
0: बिल्कुल,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, लगातार ईमेल हमें प्राप्त हो रहे हैं, और अगला ईमेल धर्मपुरी जिला धार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान सुमेरा, कशीद साइमा हसनैन और खुशिका। दिनांक 1 अक्टूबर को शाम से रात के दरमियान प्रसारित फिल्म संगीत के अलग अलग प्रोग्राम में गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार SD बर्मन साहब की जन्म जयंती पर केंद्रित फिल्म संगीत रुचिपूर्ण और स्मरणीय था। दोनों की विलक्षण रचनात्मक जोड़ी से सृजित विविध भावों के गीतों और SD बर्मन के स्वयं के स्वर में पिरोए गीतों ने कार्यक्रम को संगीत संस्मरणों की अनुपम सरिता बना दिया। इस समूचे संगीतमय वैभव को श्रोताओं तक जिस आत्मीयता, सहजता और प्रभावपूर्ण अंदाज में पहुँचाया गया वह प्रस्तुतकर्ता अमृता जी की प्रस्तुति कला की विशिष्टता की छाप रही। विषय की गहनता, शब्दों का चयन, स्तर का उतार चढ़ाव और

0: गीतों के मध्य किया गया सदाहुआ निसंद जो संयोजन है वो बहुत प्रभावशाली बन गया। निसंदेह प्रस्तुतकर्ता अमृता जी की सुघड़ और भावपूर्ण प्रस्तुति ने कार्यक्रम की गरिमा को कई गुना बढ़ा दिया। इस अच्छी प्रस्तुति के लिए और मनोहारी और अविस्मरणीय प्रस्तुति के लिए उन्हें दिल से धन्यवाद।
1: आपके सराहनापूर्ण संदेशों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इससे बहुत प्रसन्नता हो रही है। कार्यक्रमों को आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप बना पाना एक संतोषजनक एहसास है। इसने एवं प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, अगला जो है ईमेल हमें दिख रहा है और ये धार के ग्राम बागड़ी से आया है। विक्रम चौधरी, राम अवतार जिराती, धर्मेंद्र पटेल, संजय चौधरी, यश चौधरी, खुशी, करुणा, प्रिया और समस्त चौधरी परिवार ने हमें ये भेजा है और लिखते हैं कि आज इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम सुना, सारे त्योहारों के बारे में जानकारियां बहुत अच्छी लगी, नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: चौधरी परिवार को भी हार्दिक शुभकामनाएं, आपके उदार शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सराहना इस प्रयास की ओर विशेष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आशा है कि आगे भी ऐसे ही सकारात्मक संवाद बने रहेंगे आपके द्वारा।
0: बिल्कुल, और लगातार ईमेल हमें प्राप्त हो रहे हैं और ये अगला ईमेल है फैज़ अहमद, शाकिर मुल्ला जी, साबिर मुल्ला जी और रफ़ी मुल्ला जी का है और ये आया है कर्नाटक के बरगद बेल हुबली, कर्नाटक से आया।
1: कितनी दूर दूर से हमें ईमेल प्राप्त हो रहे हैं।
0: और ये लिखते हैं कि पूरे हफ्ते के कार्यक्रम सुने जिसके अंतर्गत मराठी, कल के सितारे बच्चे हमारे, मन भावन, हेलो डॉक्टर, आपका पत्र, चॉइस टाइम, एफएम आपकी पसंद, सुगम संगीत, गुड मॉर्निंग इंदौर, सुनहरे पल और भी बहुत सारे कार्यक्रम हमने सुने और ये सभी कार्यक्रम हमें बहुत ही लाजवाब और उम्दा लगे। इसके लिए आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुतकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी सराहना की, आपके इन सराहनीय शब्दों से हमारा मनोबल बढ़ा है। ऐसी प्रतिक्रियाएं अपने कार्य के प्रति नई दृष्टि और ऊर्जा प्रदान करती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लगातार ईमेल हमें प्राप्त हो रहे हैं और ज़्यादातर हमारे जो श्रोता हैं वो हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं और सुनते सुनते हमें पत्र भी भेज देते हैं। और इसी क्रम में एक और ईमेल हमें दिखाई दे रहा है केपीएस चौहान का, सनावत से लिखते हैं कि आदरणीय कार्यक्रम प्रमुख सिद्धार्थ जी और मुकाम सिंह जी को नमस्कार, आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम सभी कार्यक्रम हम सुनते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। सुबह की सभा भक्तिभाव से शुरुआत होती है, वंदनवार, रामचरितमानस गान, चिंतन सुनकर मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। योग निरोग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है जो हम सबके लिए लाभप्रद है। 2 अक्टूबर को दो महान विभूतियों की जन्म जयंती पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए वो कार्यक्रम भी हमें बहुत अच्छे लगे।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है और कार्यक्रम को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया जाना एक सुखद अनुभव है। आपके स्नेह और प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत आभार।
0: बिल्कुल, विजय महोबिया, कविता महोबिया, रामगंज खंडवा से लिख रहे हैं कि पिछले दिनों आपका पत्र कार्यक्रम प्रसारित किया गया था, ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और आपको बताना चाहेंगे कि आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम हम नियमित रूप से सुन रहे हैं जिसमें कल के सितारे बच्चे हमारे और गुड मॉर्निंग इंदौर भी हमें बहुत पसंद आता है। इसके साथ ही एमएच हॉटलाइन और मन भावन कार्यक्रम भी अच्छा लगता है और लगातार हम आकाशवाणी के साथ बने हुए हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रशंसात्मक संदेश के लिए, हृदय से धन्यवाद। और आपकी प्रतिक्रिया इस प्रयास को सार्थक बनाती है और मजबूत करती है। आगे भी इसी भावना के साथ हम अपने दायित्व का निर्वहन करते रहेंगे।
0: बिल्कुल, एक और ईमेल हमें दिख रहा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से, और ये लिख रहे हैं कि आदरणीय प्रसारक महोदय जी, आपको हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार और आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम हमें अच्छे लगते हैं और खासकर मन भावन कार्यक्रम के हम आपके नियमित श्रोता हैं, चाहे प्रातःकालीन मन भावन हो या रात्रि में प्रसारित होने वाला मन भावन, ये दोनों ही कार्यक्रम हम नियमित रूप से सुनते हैं और इस सदाबहार गीतों के कार्यक्रम में आप हमें भी हमारी पसंद के गाने सुनवाते रहिए।
1: बिल्कुल, आपके विचार जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम को मिली आपकी सराहना हमारे प्रयासों की सार्थकता सिद्ध करती है और जैसा कि आपने

0: मनभावन का कहा, मनभावन के लिए हमारे पास बहुत सारे पत्र लगातार आ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हम सही दिशा में जा रहे हैं।
1: बिल्कुल। एक और ईमेल हमें दिख रहा है, और ये आया है संबलपुर कांकेर छत्तीसगढ़ से, फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। और इनका भी कहना है कि हम नियमित रूप से आकाशवाणी और विविध भारती के कार्यक्रम सुनते हैं, और कार्यक्रम बहुत रोचक होते हैं, बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किए जाते हैं, और इस तैयारी और इस मेहनत के लिए सभी प्रस्तुतकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, और आने वाले त्योहारों की बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले कितने सारे त्यौहार हैं और हमारा देश एक तरीके से त्यौहारों में लीन हो जाएगा अब कुछ महीनों के लिए
1: जी
0: लगातार, जो
1: बिल्कुल
0: कि और जैसा कि मौसम भी बदल रहा है तो लोगों में अलग तरीके का उत्साह जागृत हो जाता है। तो उस उत्साह को हम अपने कार्यक्रमों में भी शामिल करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे।
1: एक और ईमेल हमें दिख रहा है राजू राजेश थेपड़िया हासलपुर से, और ये लिख रहे हैं कि आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम हमें पसंद आते हैं। विविध भारती से जो कार्यक्रम प्रातःकालीन सभा में और उसके बाद दिन में और सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रम होते हैं, वो भी हमें बहुत पसंद आते हैं, और बातें फिल्मों की कार्यक्रम भी हमें बहुत रोचक लगता है। हमारे मेहमान साइबर क्राइम, रहे सावधान और हेलो डॉक्टर कार्यक्रम जो कि सजीव होते हैं, ये कार्यक्रम भी हमें बहुत पसंद आ रहे हैं। इसलिए विविध भारती की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, हम रोचक कार्यक्रम बनाने के प्रयास करते हैं और ऐसे रोचक कार्यक्रम बनाने के प्रयास करते हैं जिनसे लोगों तक संदेश भी जाए। जैसे कि हमारे पिछले हफ्ते जो कार्यक्रम हमारे द्वारा बनाए गए उसमें ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए भी एक कार्यक्रम था और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए भी कार्यक्रम है। साइबर सिक्योरिटी अपनी
1: जी
0: कितनी ज़रूरी है उस पर भी हमारे पास एक कार्यक्रम है जो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो इन अनंत अलग अलग विषयों पर हम जैसे जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं उसे लोगों को जागरूक करना हमारा उद्देश्य है।
1: बिल्कुल। अगला ईमेल है संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया का, और बागपत उत्तर प्रदेश से ये हमें ईमेल भेज रहे हैं, और ये लिख रहे हैं कि सादर नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन सभी त्योहारों की, और ढेर सारे जो है गाने अब हमें नवरात्र पर केंद्रित सुनने को मिलेंगे, इसलिए आकाशवाणी और विविध भारती के लिए हम कहना चाहेंगे कि हम लगातार आपके कार्यक्रम सुनते रहेंगे।
0: बिल्कुल, ढींगे परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने इसमें उल्लेख भी किया है कि आने वाले नवरात्रि पर्व पर कार्यक्रम आपको सुनने को मिलेंगे, बेशक आपको वो सुनने को मिलेंगे। आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए हम प्रयासरत हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है और हम अच्छे अच्छे कार्यक्रम हर दिन प्रसारित करेंगे।
1: बिल्कुल। एक पत्र आया है त्रिलोक नगर देवास से अनंत चिखले और साथियों का, और इन्होंने लिखा है कि बहुत सारे कार्यक्रम हम लगातार सुनते हैं, और एक सुझाव दिया है, चूंकि सुझाव नहीं है बल्कि एक ये लिखते हैं कि मैं पीएचई में सेवारत रहा और अब सेवानिवृत्त हो चुका हूं, लेकिन जल संकट जो है अब इस बार हमें दिखाई दे रहा है, और ये लिखते हैं कि इस वर्ष करीब 17.56 इंच लगभग की बारिश हुई है, जबकि औसत बारिश 36 से 39 इंच होती है। बारिश की हर बूंद हमारे लिए प्रकृति का अनमोल उपहार है, लेकिन केवल बारिश होना पर्याप्त नहीं, ज़रूरी यह है कि बारिश के पानी को सहेजा जाए, भूजल को रिचार्ज किया जाए और रोज़मर्रा के जीवन में पानी की बर्बादी को रोका जाए। आइए आज ही से जल संरक्षण को अपनी आदत, जिम्मेदारी और सामाजिक संस्कार बनाएं। और कुछ आदतें उन्होंने हमें बताई है कि नल को खुला छोड़कर पानी बर्बाद न करें, रोड पर पानी नहीं ढोलें, कुछ लोग ऐसा करते हैं, ब्रश शेविंग और हाथ मुंह धोते समय ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल न करें, घर में कहीं भी नल पाइप या टंकी के रिसाव हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं, और आरओ से निकलने वाले अतिरिक्त पानी को फेंकने के बजाय पौधे या अन्य उपयोग में लाएं, कपड़े और बर्तन धोते समय पानी की आवश्यक बर्बादी को रोकें, छत यानी घर की छत पर गिरने वाले वर्षा जल को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से सहेजने का प्रयास करें, और बच्चों को बचपन से ही बूंद बूंद की कीमत समझाएं।
0: कितनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने लिखी हैं जो
1: जी
0: हमें ध्यान में रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: पूरे समाज अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखेगा तो मुझे लगता है कि जल संकट बहुत हद तक काबू में आ सकता है, जो कि जैसा कि आपने लिखा भी है कि इस साल बहुत ही कम बारिश हुई है। तो अगर हम इन चीज़ों का पालन करेंगे तो जल संकट से पार हम पा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और जल संकट वाकई में इस बार

0: बारिश बहुत कम हुई है और ये चिंतनीय पहलू है, क्योंकि पानी है तो सब कुछ है।
1: बिल्कुल, और जैसा कि अभी मौसम बदला है तो सर्दियों का मौसम है, अगर हम अभी पानी बचाएंगे तो आने वाले गर्मियों के मौसम में हमें बहुत राहत रहेगी।
0: बिल्कुल, इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे सुनने वाले हैं जल के संरक्षण के महत्व को समझें और जल संरक्षण की प्रक्रिया में जुटे रहें।
1: और आपके द्वारा दिए गए इतने अच्छे अच्छे सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, एक और ईमेल हमें दिख रहा है, ये शायद पुनः आया है खंडवा के छिपा कॉलोनी से, और आज के आपका पत्र कार्यक्रम में सिद्धार्थ जी की सधी हुई जो उत्तर देने की प्रक्रिया हमें बहुत अच्छी लग रही है, और बहुत सारे जो पत्रों के जवाब उन्होंने बहुत ही सधे हुए स्वर में दिए हैं, और मुकाम जी की फटाफट पढ़ने की रफ्तार भी हमें बहुत पसंद आई।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी सराहना की, और ये जानकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। ऐसे संदेश अपने काम के प्रति संतुष्टि और जिम्मेदारी दोनों का एक एहसास कराते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, लगातार हमें ईमेल हमें प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने हमें ईमेल भेजे हैं, और हमने ज़्यादातर श्रोताओं के ईमेल्स को हमने शामिल कर लिया है। और एक और ईमेल हमें दिख रहा है, और ये है भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ उन्हेल ज़िला उज्जैन से, और ये लिखते हैं कि कांस के पौधों पर फूल आना वर्षा ऋतु के बुढ़ापे का संकेत है, बरसात आकर चली गई और इस वर्ष कुएं तालाब और नदी नाले खाली रह गए, आगामी रबी फसल के चयन हेतु किसानों को सोच समझ कर कदम रखना होगा, कम पानी वाली फसलें लगाने में ही समझदारी है। आज खेती की बातें में प्रेरणा पहारे से मृदा परीक्षण पर जानकारी पसंद आई, रविवार 4 अक्टूबर को सुबह योग निरोग में अवंतिका जी से योग के माध्यम से मानसिक तनाव का निदान विषय पर बातचीत सुनी, भ्रामरी प्राणायाम अनुलोम विलोम सूर्य नमस्कार सहित विभिन्न योगासन की जानकारी पसंद आई। रविवार को सुबह 11 बजे विविध भारती इंदौर पर हमारे मेहमान कार्यक्रम में कर्नल डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा से मुकाम सिंह जी की बात सराहनीय लगी, कठिन परिस्थितियों का सामना कर किस तरह से सेना में भर्ती हुए और इतने प्रतिभागियों में कैसे सफल हुए, फौजी चयन हेतु उन्होंने जिस प्रकार से हमें जो जानकारी दी वो हमें बहुत पसंद आई, और अंत में आज प्रातःकालीन बेला में वंदना में राम रस पीले भजन बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद कहा है।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी प्रेरणादायक कार्यक्रम हम बनाते रहते हैं। मुकाम जी, आप कुछ बताना चाहेंगे जो हमारा आने वाले रविवार को एक कार्यक्रम प्रसारित होने वाला है?
0: हाँ बिल्कुल, हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इस बार रविवार को इंदौर और मध्य प्रदेश के जो दिग्गज उद्योगपति हैं विनोद अग्रवाल साहब, उनसे हमारी भेंट हुई है, उनसे लंबी बातचीत हुई है, और ये कार्यक्रम हम इस बार यानी कि इस रविवार को प्रातः 11 बजे से 12 बजे के बीच में हम लोग आपको एक घंटे तक उनके साथ जोड़े रखेंगे, और ये विशेष अवसर है, और जब इतने बड़े लोग हमसे जुड़ते हैं और अपनी बातें साझा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके लिए बहुत प्रेरणास्पद होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
1: जी, आपकी उनसे हुई बातचीत बहुत ही रोचक थी, इतने बड़े व्यक्तित्व, इतने सफल उद्यमी और इतने सरल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ हम लोगों ने मुलाकात करी, जिसकी आवाज़ आप तक हम रविवार को पहुंचाने वाले हैं।
0: बिल्कुल, तो सुनना ना भूलें इस रविवार यानी 11 अक्टूबर 2026 को सुबह 11 से 12 बजे के बीच में हमारे मेहमान कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने उद्योगपति विनोद अग्रवाल से मुकाम सिंह चौहान यानी मेरी बातचीत, और आप सुन सकेंगे प्रेरणादायी ये बातचीत। और सिद्धार्थ जी, अब हमारे पास समय तो ऐसा लग रहा है कि चलने के लिए कह रहा है, पर और चलते चलते आप यदि कुछ कहना चाहें तो हमारे श्रोताओं के लिए उपयुक्त होगा।
1: मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं सुनना चाहूँगा, और लगातार ये चीज़ें हम सुनते रहते हैं आपके द्वारा, तो ये हमें मार्गदर्शित करती हैं, हमारे लिए प्रेरणा देती हैं, हमें सुझाव जो मिलते हैं उससे हमें यह पता चलता है कि हम कहाँ अपने चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बदलाव आते हैं जो कि सकारात्मक होते हैं, और वो बदलाव आते हैं जो लोगों तक पहुँच कर उनमें भी बदलाव लाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बदलाव आता रहे, आपका दिन शुभ हो, महीना शुभ हो, साल शुभ हो, यही हमारी कामना है।
0: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पर केंद्रित आकाशवाणी के जो प्रसारण

अभी आप सुन रहे थे आपका पत्र कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे कार्यक्रम प्रमुख सिद्धार्थ भूषण और मुकाम सिंह चौहान। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, लोक संगीत सुनिए। और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मान सिंह भोंदिया और साथियों के गाए लोकगीत। आइए सुने कार्यक्रम का ये पहला मालवी लोकगीत।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम, और लोक संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मानसिंह भोंदिया और साथियों के गाए लोकगीत। आइए सुने ये अगला लोकगीत।

मानसिंह भोंदिया और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे मालवी लोकगीत, तो और इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब सुनिए सुगम संगीत, और इस कार्यक्रम के कलाकार हैं ताहिरा सैयद, और इनकी गाई कुछ रचनाएं हम आपको सुनवा रहे हैं। तो आइए सुने कार्यक्रम की ये पहली रचना।

0: सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे ताहिरा सैयद की गाई रचनाएं। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत। पहले सुनिए ये संदेश।
1: श्रोताओं, FM 101.6 MHz पर और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर विविध भारती के इंदौर केंद्र से प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से सुनिए साइबर जागरूकता पर केंद्रित सजीव फोन इन कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान। इस कार्यक्रम में IT विशेषज्ञ, स्टेट साइबर सेल इंदौर के आला अधिकारी, साइबर ठगी से जागरूक कर रहे संस्थान के विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित होते हैं। तो आप भी सीधे हमारे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो जुड़िए हमारे कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान से और अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान जानिए। सुनते रहिए विविध भारती का इंदौर केंद्र FM 101.6 MHz पर और कार्यक्रम साइबर क्राइम रहे सावधान प्रति शुक्रवार सुबह 11:32 से 12 बजे तक।
0: ये आकाशवाणी

का दौर केंद्र है। आइए सुने शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रिजमोहन बमराले का गायन राग गुजरी तोड़ी।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
0: जी
1: सर, जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
0: जी लोकेंद्र जी, कौन सा गाना सुनेंगे?
1: सर जी, आज जो गाना सुनना है मुझे, ये जो अपने नाना पाटेकर जी को स्वरूप मेरा सॉन्ग रहेगा सर
0: जी। जी, जी।
1: ये क्रांतिवीर फिल्म में गाना है
0: जी
1: सर जी, और ये स्वरूप रेखा, क्योंकि नाना पाटेकर जी ने बहुत सी फिल्मों में काम किया है, और नाना पाटेकर जी की जो एक देशभक्ति फिल्में भी है, और प्रहार पिक्चर है, पुरानी है, राजू बेंगन जेंटलमैन,
0: तिरंगा है,
1: क्रांतिवीर है, तिरंगा है
0: जी,
1: बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो उन्होंने इन फिल्मों में काम किया है। करीब 100 फिल्मों में उन्होंने अपना अभिनय निभाया है
0: जी। जी,
1: और भी फिल्में हैं उनकी, बहुत ही सुपरहिट फिल्में रही है, उनके किरदार को हम हमेशा याद रहेगा। और जैसे कि नाना पाटेकर जी ने अपना पूरा जीवन में जितनी भी फिल्में बनाई, अच्छी से अच्छी फिल्में दी,

0: जी जी जी न जी आज को
1: जा बैठ गई तो खड़ी हो जा, खड़ी हो गई जरा घूम जा, घूम गई जरा झूम जा, झूम गई वाला
0: जी। चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का
2: खड़ी हो जा।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: सर जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: अनोखे सिंह
0: बाग जिहार।
1: बाग जिलाधार अनोखे।
0: जी जी जी जी, आपकी अदाएं भी बहुत अनोखी हैं।
1: ओ सर जी, हमारे हीरो इस दुनिया में नहीं है
0: जी,
1: उन्हीं को समर्पित हम कोई अच्छा सा गाना आप सुना दीजिए।
0: बताइए फिल्म का नाम बताइए।
1: अब गाने के बोल तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन परिंदा परिंदा
0: परिंदा फिल्म का गाना सुनवा दें। तो नाना पाटेकर जी की कौन कौन सी फिल्में आपने देखी या सारी फिल्में ही देख डाली?
1: सारी तो नहीं देखी सर जी, उस सबसे विशिष्ट तिरंगा ही है सर जी।
0: तिरंगा और हाँ। दूसरी फिल्में बहुत सारी थी नाना पाटेकर की। तो ये जो आपने परिंदा फिल्म का गाना कहा है, तो ये परिंदा देखी थी कि नहीं?
1: देखी थी सर जी, बाकी हम तो क्या है कि

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: बाग जिला धार से बोल रहा हूँ
0: जी। अभी अनोखे लाल जी भी जुड़े थे बाग से ही।
1: हाँ सर, वो हमारे 1 किलोमीटर दूर है, हम इधर 1 किलोमीटर बाहर है।
0: अच्छा, तो आप कहाँ, नदी के पास में?
1: हम नदी के पास में सर, दिए बना रहे, दीपावली की तैयारी चल रही है।
0: तो बाग में तो माँ बागेश्वरी का मंदिर है और नवरात्रि में खूब तैयारियां होगी वहाँ पर।
1: हाँ सर, यहाँ माँ बागेश्वरी का मंदिर है, शक्ति पीठ है
0: जी,
1: तैयारियां फुल हो गई है। हाँ,
0: और गरबे भी होते
1: हैं? हाँ गरबे होते हैं ना सर, अलग अलग पंडाल बने हुए हैं, सब दूर बना दिए है।
0: अच्छा,
1: अब उनकी डेकोरेशन, लाइट का काम वगैरह ये सब चल रहा है।
0: क्या बात है, और आप दिए बनाने में व्यस्त हैं?
1: सर दिए बनाना, शाम को फिर हम फ्री हो जाते हैं ना, अभी दीपावली का ऑर्डर बहुत है ना सर, बाहर जाता है हमारा।
0: बिल्कुल, तो बताइए आपकी पसंद का गाना बताइए।
1: नदिया के पार का है, कौन दिशा में लेके चला रहे बटुरिया
0: जी, तो इसका गाना
1: जी सर
0: जी।

0: तो इसी के साथ एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अब आपको अगला कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से, उसकी प्रतीक्षा करनी होगी।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: श्रोताओं नमस्कार, हमारे फोन इन कार्यक्रम

0: राहुल ध्रुबे जी।
1: होगा लगभग 20 दिन।
0: चलिए फिर तो ठीक है, हम आपका कॉल ले सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ते के पहले अगर कोई कॉल करता है तो उसका कॉल नहीं लिया जाता है।
1: तो मैंने तो इससे पहले

0: गीत भी आपका सच में अनोखा ही है, क्योंकि ये अनोखा अंदाज का तो हमने आज तक नहीं बजाया। मैं पागल दीवाना या तू दीवाना पागल है इस पे?
1: तू दीवाना पागल
0: वही कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। चलिए तो ये गीत आप बिल्कुल सुनिएगा, ठीक है? कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपकी बात कविता रावत से हो रही है।
1: वैसे लग तो रहा था मुझे
0: चलो कोई बात नहीं, ठीक है राहुल जी।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्ते
1: हेलो, नमस्ते मैडम। मैडम मोहम्मद सलमान बोल रहा हूँ शहडोल से।
0: शहडोल से। मोहम्मद सलमान, कितने दिन पहले कॉल किया था?
1: मेरा फोन लगे मैडम, फिर 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं मैडम। आप कैसी
0: चलिए,
1: हो?
0: हम बहुत बढ़िया हैं। और अगर आपने 1 हफ्ते के पहले कॉल किया होगा तो फिर हम
1: जी
0: आपका कॉल नहीं ले पाएंगे।
1: नहीं मैडम, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं।
0: ठीक है ठीक है,
1: जी,
0: चलिए और सुनाइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मेरे वो गाना सुनना है मैडम, मैंने प्यार किया फिल्म का, जा कबूतर जा सलमान खान की।
0: ठीक है, तो ये
1: जी
0: गीत तो
1: मैडम,
0: आपको जरूर मिलेगा, आप सुन सकेंगे
1: हेलो,
0: अपना गीत। ठीक है,
1: हाँ
0: हाँ जी बोलिए। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ रही है आपकी?
1: तो
0: हेलो,
1: फिर क्या कहते हैं, फिर आप कैसी हैं मैडम?
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: हम बहुत अच्छे हैं मैडम, आपके सारे प्रोग्राम सुनते हैं मैडम, हमको
0: अरे
1: बहुत
0: वाह,
1: पसंद आते हैं।
0: सच में कितने
1: जी
0: टाइम से
1: मैडम,
0: सुन रहे हैं आप हमारे प्रोग्राम?
1: हम आपके प्रोग्राम बहुत समय हो गए मैडम, हमको 8-10 साल हो गए मैडम।
0: अरे वाह, क्या करते हैं आप सलमान जी?
1: हमारी दुकान है मैडम हार्डवेयर की। जी
0: अच्छा, तो बढ़िया है, दुकान पर बैठे बैठे रेडियो चला लेते होंगे।
1: हाँ मैडम, दुकान भी चलती है और आपके प्रोग्राम भी आते हैं, तो बहुत अच्छा, तो मैडम
0: चलिए, बहुत खुशी हुई हमें, आप हमारे रेडियो से जुड़े हुए हैं, और कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा, ठीक है सलमान जी?

0: और आपके प्रोग्राम भी आते हैं तो बहुत अच्छा, तो और बहुत अच्छा लगता है मुझे।
1: चलिए, बहुत खुशी हुई हमें आप हमारे रेडियो से जुड़े हुए हैं, और कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा, ठीक है सलमान जी।

0: जी, अंबेडकर चौक से अगरवाड़ खोराई से जिला सागर मतभेद से राम सखी परमानंद।
1: राम सतीश
0: परमानंद।
1: अच्छा जी, कब कॉल किया था आपने?
0: अब देख लो मैडम, 15-20 दिन हो गए, तो 8-10 दिन के बाद हमने बैलेंडर आदू पहले लगभग 20 दिन।
1: चलिए कोई बात नहीं। और कैसे हैं आप
0: जी?
1: परमानंद जी, आप क्या?
0: बढ़िया।
1: क्या काम करते हैं?
0: काम करते बिल्डिंग वर्क आप नहीं कर पाते हैं।
1: अच्छा,
0: घर का काम थोड़ा बहुत।
1: चलो बढ़िया है, रेडियो का प्रोग्राम सुनते रहते हैं आप, है ना?
0: रेडियो का प्रोग्राम सुनते रहते हैं आपके कार्यक्रम।
1: चलिए, पसंद आते हैं आपको हमारे कार्यक्रम?
0: बहुत पसंद आ रहा है आपकी। हेलो, वो राति ग्राम सभा और भी कार्यक्रम।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? कौन सा?
0: नफरत की दुनिया
1: है। नफरत की दुनिया?
0: हाँ, नफरत की दुनिया छोड़ के।
1: अच्छा, हाथी मेरे साथी
0: जी।
1: गाना सच में बहुत अच्छा है ये
0: जी।
1: और परिवार में कौन कौन है आपके?
0: परिवार में मेरी अच्छा मिस्टर जी, जिसका नाम राम सखी है।
1: हाँ।
0: और अच्छा, 2 बच्चे हैं, एक का नाम सौरभ है, उसने बीटेक कर लिया सिविल से।
1: अरे वाह।
0: एक का नाम गौरव है, छोटा वाला, उसने एमटेक कर लिया।
1: अरे वाह।
0: मैकेनिकल ब्रांच से दोनों तैयारी करा रेलवे में।
1: चलो, आप तो मतलब है ना, टेंशन फ्री।

0: दो बच्चे हैं, एक का नाम सौरभ है, उसने बीटेक कर लिया सिविल से।
1: अरे वाह।
0: एक का नाम गौरव है छोटा वाला, उसने एमटेक कर लिया।
1: अरे वाह।
0: मैकेनिकल ब्रांच से दोनों तैयारी करा रेलवे में।
1: चलो आप तो मतलब है ना टेंशन फ्री।

0: हेलो।
1: हेलो, ये
0: हाँ जी,
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ
0: प्रेम सिंह सिसोदिया
1: जी,
0: कहाँ से?
1: उज्जैन नागदा तहसील और गांव बछोड़ा से जी।
0: अच्छा, कैसे हैं, क्या हाल है आपके?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए, आप कैसे हो
0: हम भी अच्छा है। समय
1: जी? माहौल तो
0: मौसम,
1: काफी अच्छा है क्योंकि अभी नवरात्र शुरू होने वाले हैं ना।
0: हाँ तो तैयारियां शुरू हो गई होगी माता के आगमन
1: हाँ
0: की।
1: बिल्कुल, साफ सफाई तो मतलब हर घर में रोज होती ही है,
0: हाँ
1: और उसके अलावा जब मंदिर में भी मतलब स्पेशल पूजा होती है नव दुर्गा के रूप में, जब
0: हाँ
1: मूर्ति स्थापना की जाती है ना।
0: हाँ
1: हाँ तो इस तरह से मतलब, और साथ में माता जी की एक प्रतिमा स्थापित करते हैं अलग से लाकर, और मतलब सभी लोग हैं और अलग अलग परफॉर्मेंस देते हैं सभी लोग अपने अपने कलाओं
0: बिल्कुल।
1: का।
0: आजकल ये लगभग हर शहर में, बल्कि हर गली मोहल्ले में इस चीज की सब पंडाल लगाकर और 9 दिन तक बड़ी आस्था के साथ गरबा करके, आरती करके, महाआरती करके उनका ते है ना।
1: जी, और आखिरी दिन मतलब कन्या भोज भी करते हैं और
0: बिल्कुल
1: मतलब
0: बिल्कुल
1: भंडारे भी मतलब सभी जगह
0: जी।
1: लगाते हैं, और इस तरह से मतलब एक आस्था के प्रति मतलब लोगों का झुकाव बढ़ता ही जा रहा है दिन
0: बिल्कुल
1: प्रतिदिन।
0: बिल्कुल। और ये अब निरंतर लोगों के बीच में ये चीज बढ़ती ही जा रही है और बड़ा सुंदर माहौल हो जाता है उन 9 दिनों में। बिल्कुल
1: हाँ
0: आस्था
1: बिल्कुल,
0: से
1: थोड़ा
0: ओतप्रोत सब लोग है ना
1: जी हाँ हो जाता है, और अभी
0: जी।
1: खेती किसानी में मतलब खेत भी खाली हो जाते हैं, नए फसल की भी
0: हाँ
1: तैयारी करते हैं ना सभी लोग,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: मतलब दोगुना उत्साह बना रहता है।
0: बिल्कुल। अच्छा, गीत तो बताइए, आप कौन से गीत सुनना चाहते हैं?
1: हाँ तो आप अवतार फिल्म का ही सुनवा दीजिएगा, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया
0: अरे
1: है
0: वाह, क्या बात है।
1: जी।
0: ठीक है, चलिए तो ये गीत बिल्कुल सुनिएगा आप। ठीक है, कॉल
1: जी
0: करने के लिए
1: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और मैं मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम भी सुनता हूँ
0: बिल्कुल सुनिएगा, चलिए
1: जी,
0: नमस्ते।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: जी, नमस्ते।
1: गायत्री
0: कौन बोल रहे हैं?
1: महल कनवाड़ी जिला महोबा तहसील सुनरान पांचाल बात कर रहे हैं मैडम जी।
0: आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं सुनाई दी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से?
1: गायत्री महल पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश शिव नारायण पांचाल
0: शिव नारायण पांचाल,
1: जी।
0: उत्तर प्रदेश महोबा से।
1: हाँ, काफी दिनों में बात, 1.5 वर्ष हो चुके हैं जब बात हुई है।
0: ओ भाई, 1.5 या 2 वर्ष, इतना लंबा समय क्यों लगा दिया आपने कॉल का?
1: अब ऐसा है ना, अब थोड़ी व्यवस्था थोड़ी बहुत हो गई,
0: हाँ,
1: कुछ ऐसी कि नहीं हो पाई बात।
0: अच्छा, चलिए, बाकी सब राजी खुशी।
1: हाँ, सब और सब बढ़िया।
0: चलिए, अच्छा, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है किस्मत।

0: किस्मत।
1: किस्मत।
0: अच्छा, एक सेकेंड, हम देखते हैं किस्मत का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं किस्मत का।
1: किस्मत का है हम हैं दीवाने, देखी
0: अच्छा, किस्मत का हम है, हमें दीवाने तो नहीं है, हम है मस्त मौला है।
1: नई वाली है, नई
0: अच्छली का,
1: वाली का, नई
0: तो
1: वाली का
0: नई
1: हम हैं
0: वाली में जो
1: दीवाने।
0: 2004 में रिलीज हुई थी, उसका अभिजीत का गाया हुआ है हम है मस्त मौला और दिल तेरी दीवानगी में, ये हैं गाने। बताइए कौन सा गीत सुनना है आपको,
1: आप
0: कौन सा।
1: हम हैं मस्त मौला।
0: जी चलिए, बिल्कुल ये गीत सुनिएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है शिवनारायण जी, ठीक है, नमस्ते।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्ते
0: नमस्ते।
1: मैडम।
0: जी नमस्ते।
1: जगदीश चौहान, पेंटर, मुखर्जी नगर, इंदौर से बोल रहा हूँ मैं
0: जगदीश चौहान जी।
1: जी। मेरे
0: कैसे?
1: को माता जी की आरती सुनना है। चलो
0: माता जी की आरती? कौन सी मूवी की? कोई सी भी सुना दे।
1: बुलावा आया है, माता ने बुलाया है,
0: ये
1: नरेंद्र
0: तो
1: नरेंद्र चंचल जी का।
0: बिल्कुल, लेकिन ये हमारे एक जो श्रोता हैं प्रेम सिंह जी उज्जैन से, उन्होंने इसकी फरमाइश पहले से ही कर दी है, तो ये गीत तो हमारा बजेगा ही।

0: बजेगा। इसके अलावा आप कुछ और सुनना चाहते हो तो वो बताइए।
1: दूसरी फिल्म का गाना,
0: हाँ
1: दूसरी फिल्म का गाना तो फिर जय संतोषी माता को सुना दीजिए मैडम।
0: जय संतोषी माता का
1: आरती।
0: आरती, ठीक है। हम एक मिनट, ये वाला गीत हम पर है कि नहीं है, है ना?
1: जी मैडम, धन्यवाद।
0: क्या काम करते हैं आप?
1: मैं पेंटर का काम करता हूँ मैडम, इस पर पेंटिंग मशीनें कलर करता हूँ।
0: ठीक ठीक ठीक, चलिए। तो ये आरती हम आपको कल के प्रोग्राम में जरूर सुनिएगा, ठीक है जगदीश जी? कॉल करने के लिए बात।
1: जी मैडम, आपको भी धन्यवाद
0: जी। नमस्ते
1: जी।

0: अच्छा बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: ये सिर्फ तुम का टाइटल सॉन्ग सुनना है।
0: अच्छा सिर्फ तुम, ये आपकी चॉइस है या कोई और है आपके पीछे?
1: नहीं जी, हमारी पसंद है, हम ऐसे काम में लग जाते हैं तो फोन।
0: बहुत अच्छी बात है, मतलब ये नई नई चॉइस है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा लगा।
1: हाँ क्या, टमाटर नहीं तोड़े तो बैठे थे कुआ पे बढ़िया आम के
0: हाँ
1: पेड़ के नीचे, तो मैं आज बहुत गीत सुनने बढ़िया।
0: बढ़िया बढ़िया, चलिए पक्का सुनिएगा ये गीत, ठीक है? कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोतीलाल जी।
1: ओके दीदी, ओके।
0: जी।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते।
1: जी, नमस्ते। झिरनिया जिला खरगोन से किशोरी गोले बोल रहा था मैडम।
0: किशोरी गोरे
1: हाँ, गोले गोले जी,
0: गोले।
1: प्रजापत
0: कहाँ से? उज्जैन से?
1: नहीं, झिरनिया झिरनिया से। हाँ,
0: झिरनिया।
1: झिरनिया जिला खरगोन
0: अच्छा।
1: जी। गाना
0: और
1: सुनना था मैडम
0: बताइए ना, कौन सी फिल्म का गाना सुनना है?
1: जी, जहरीला इंसान का है वो, मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली।
0: ओहो,
1: जी,
0: बड़ा अच्छा गाना है ये तो, किशोर कुमार का गाया हुआ है
1: ये किशोर कुमार की आवाज में जी,
0: ना।
1: किशोर कुमार का। हाँ, अभी पुण्यतिथि भी आ रही है 13 तारीख को,
0: हाँ
1: और ये हमारे पास में ही है, खंडवा में रहते हैं। खंडवा से हमारा जितना 50 किलोमीटर पड़ता है,
0: अच्छा।
1: वहाँ भी 13 तारीख को कार्यक्रम भी है वहाँ पे हुई है,
0: अच्छा
1: खंडवा
0: अच्छा
1: में किशोर कुमार के उसमें
0: अरे वाह,
1: जी।
0: चलिए बढ़िया है। तो ठीक है, ये अपनी पसंद का ही गीत हम आपको अवश्य सुनवाएंगे, ठीक है
1: जी जी
0: किशोर जी,
1: मैडम
0: गोले जी?
1: जी,
0: जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें। अब अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो सखी कविता रावत को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर आयोजित दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान सभी राज्यों से आए मंत्रियों और महिला अधिकारियों द्वारा शिक्षा, पोषण, बाल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज हरदा में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान कार्यक्रम में उद्यमियों, युवाओं, किसानों, आम लोगों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज आगरमालवा के नवीन कृषि उपज मंडी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल होंगे। यहां मुख्यमंत्री उपस्थित किसानों से संवाद भी करेंगे। भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट 2026 के दूसरे दिन कल मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने देश विदेश से आए ऑपरेटर्स, व्यवसायियों और संचालकों से संवाद किया। यहां 177 ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी स्टॉल लगाए गए हैं। इस आयोजन

0: से प्रदेश के पर्यटन को वैश्विक पहचान मिलेगी। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कल भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 60 में करीब 42 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसमें सीसी सड़क निर्माण और दीपनगर पार्क में शेड बनाया जाना शामिल है। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज रांची में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सबसे पहले हमने ली है आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं एयरपोर्ट रोड इंदौर से मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ, संजना मालती, स्वाति प्रयाग और ललिता नारायण। आप सभी ने ये हमें ख़त भेजा है एयरपोर्ट रोड इंदौर से। जयराज राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ से जगमाल सिंह डामल, हैप्पी डामल और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांधी चौक रोपण से हरदेव, बलविंदर और मीका। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

आइए आपको सुनवाते हैं तोहफा फिल्म का नगमा, आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल सुरों में। सुनना चाहा आप सभी ने पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और बबलू मंसूरी। मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप, शुभचंद्र, साहिल और बिट्टा ने। बक्सर से मंजू, पूनम, कविता, संजना और सानवी गुप्ता। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया, आसमा, सालिया, शोएब, साइमा, मुस्ताब, आफिया, रऊफ और शहीद। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी नंदा हनुमान बोखड़े, सपना संगीता रोड से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। शेरकोट जिला बिजनौर से वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रज्जन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सोम्या और इनके मम्मी पापा। आप सभी ने सुनना चाहा है बलमा फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं कुमार सानू और आशा भोसले ने। गीत समीर का है, तर्ज बनाई नदीम श्रवण ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर बलमा फिल्म का ये नगमा।

आइए अब आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और श्रीमती शीतल। गौरी नगर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राकेश।

ई पारस तपस्या और करिश्मा कामले, खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सभी ने सुनना चाहा है कुदरत फिल्म का नगमा, तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को आदि बर्मन की तर्ज पर।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात। युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज

0: अमेज़न AIR पर भी उपलब्ध है।
1: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेवी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेवी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेवी सारथी ऐप।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: और सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: इस समय आप हैं हमारे साथ।
4: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का आठवां भाग।
1: तुमने ये खिलौने कहां से पाए?
2: शारदा की घिग्गी बन गई, मारे भय के थरथर कांपने लगी, मुंह से एक शब्द भी ना निकला।
1: बोलती क्यों नहीं? तुझे किसने दिए ये खिलौने?
2: शारदा रोने लगी। तब श्याम किशोर ने उसे फुसलाकर कहा,
1: हे रो मत, हम तुझे मारेंगे नहीं, तुझे तुझसे इतना ही पूछते हैं, तूने ऐसे सुंदर खिलौने कहां से पाए, पता?
2: इस तरह दो चार बार दिलासा देने से शारदा को कुछ धैर्य बंधा। उसने सारी कथा कह सुनाई। एक अनर्थ हो गया, इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती। उसका गूंगी हो जाना भी इससे अच्छा था। देवी कोई बहाना करके बला सिर से टाल देती, पर होनी को कौन टाल सकता है? श्याम किशोर के रोम रोम से ज्वाला निकलने लगी। खिलौने वहीं छोड़कर वो धम धम करते हुए ऊपर गए और देवी के कंधे दोनों हाथों से झिंझोड़कर बोले, तुम्हें इस घर में रहना है कि नहीं, साफ साफ कह दो।
3: तुम्हें आजकल क्या हो गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो? अगर मुझसे जी उब गया है तो जहर दे दो, जला जला कर क्यों मारना चाहते हो? सफाई वाले से बातें करना तो क्या ऐसा अपराध?

0: नहीं है, जब उसने आकर पुकारा तो मैंने आकर द्वार खोल दिया। अगर मैं जानती कि जरा सी बात का बतंगड़ हो जाएगा तो उसे दूर से ही दुत्कार देती।
1: जी चाहता है तालू से जबान खींच लूं। बातें होने लगी, इशारे होने लगे, तोहफे आने लगे, अब बाकी क्या रहा है?
0: क्यों ना घाव पर नमक छिड़क रहे हो, एक अबला की जान लेकर कुछ नहीं पाओगे।
1: मैं झूठ कहता हूँ?
0: हाँ झूठ कहते हो तुम।
1: ये खिलौने कहाँ से आए?
2: देवी का कलेजा धक से हो गया। काटो तो बदन में लहू नहीं, समझ गई इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं, सर्वनाश के सभी संयोग मिलते जाते हैं। ये निगोड़े खिलौने ना जाने किस बुरी साइत में आए हैं। मैंने लिए ही क्यों, उसी वक्त क्यों ना लौटा दिए? बात बनाकर बोली,
0: आग लगे वही खिलौने तोहफे हो गए। अरे बच्चों को कोई कैसे रोके, किसी की मानते ही नहीं। कहती रही मैं कि मत ले मत ले, अरे मगर मानी ही नहीं तो मैं क्या करती।
1: इनके साथ और कौन कौन सी चीजें आई हैं? भला चाहती हो तो अभी दिखाओ, इसी वक्त।
0: जो कुछ आया होगा इसी घर में होगा ना, देख क्यों नहीं लेते? इतना बड़ा घर भी नहीं है कि 4 दिन लगे खोजने में।
1: मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। खैरियत इसी में है कि जो चीजें आई हैं वो लाकर सामने रख दो। ये तो हो नहीं सकता कि लड़की के लिए खिलौने आए और तुम्हारे लिए कोई सौगात नहीं आए। तुम भरी गंगा में कसम खाओ तो भी मुझे विश्वास ना होगा।
0: तो घर में देख क्यों नहीं लेते?
1: कह दिया मुझे फुर्सत नहीं है, सीधे से सारी चीजें लाकर रख दो, नहीं तो इसी दम गला दबाकर मार डालूंगा।
0: हाँ मारना हो तो मार डालो, जो चीजें आई ही नहीं तो मैं दिखा कहां से दूं?
2: श्याम किशोर ने क्रोध से उन्मत्त होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि चारों खाने चित्त जमीन पर गिर पड़े और फिर उसके गले पर हाथ रखकर बोले,
1: दबा दूं गला? नहीं दिखाएगी तू इन चीजों को, नहीं दिखाएगी।
0: जो अरमान हो तो पूरा कर लो।
1: खून पी जाऊंगा, तूने समझा क्या है?
0: अगर दिल की प्यास बुझती हो तो पी जाओ।
1: है? अब फिर उस सफाई वाले से बातें करोगी? अगर अब कभी मुन्नू या उसके शोधे को द्वार पर देखा तो गला काट डालूंगा।
2: ये कहकर श्याम बाबू ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए। लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही। उसके मन में इस समय पति प्रेम की मर्यादा रक्षा का लेश मात्र भी ना था। उसका अंतःकरण प्रतिकार के लिए विकल हो रहा था। कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद आज इस झोंके से प्रेम की दीवार भूमि पर गिर पड़ी और मान की रक्षा करने वाली कोई साधना ना रही। श्याम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने लिए हुए उनके पीछे पीछे घर से बाहर निकली। बाबूजी खिलौनों को देखकर कुछ नहीं बोले। अब उसे किसी की चिंता, किसी का कोई भय नहीं रहा। अब वो क्यों ना अपनी सहेलियों को खिलौने दिखाए। सड़क के उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लड़की अपने द्वार पर खड़ी थी, शारदा उसे ही खिलौने दिखाने चली। बीच में सड़क थी, सवारी गाड़ियों और मोटरों का तांता बंधा हुआ था। शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा। बालोचित उत्सुकता से भरी हुई वो खिलौने लेकर दौड़ी। वो क्या जानती थी कि मृत्यु उसी तरह प्राणों का खिलौना लेकर खेलने के लिए दौड़ी चली आ रही है। सामने एक मोटर आती हुई दिखाई थी, दूसरी ओर से एक बग्घी आ रही थी। शारदा ने चाहा दौड़कर उस पार निकल जाए, मोटर ने हॉर्न बजाया, शारदा ने जोर मारा कि सामने निकल जाए, पर गोली को कौन टाल सकता था। मोटर बालिका को रोनती हुई चली गई। खिलौने ज्यों के त्यों थे, उनमें से एक भी नहीं टूटा था। खिलौने रह गए, खेलने वाला चला गया।

0: चारों ओर से लोग दौड़ पड़े।
1: अरे यह तो बाबूजी की लड़की है जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं। मैं सूचना देता हूं, बाबूजी, बाबूजी, आपकी लड़की तो सड़क पर नहीं खेल रही थी, जरा नीचे तो आइए।
0: देवी ने छज्जे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा तो शारदा खून से लथपथ पड़ी थी। चीख मारकर बेतहाशा दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके पैर कांपने लगे। इस वज्रपात ने उसे स्तंभित कर दिया। रोना भी नहीं आया।
1: बाबूजी कहां गए हैं? उनको

0: कैसे बुलाया जाए?
1: देवी क्या जवाब देती? वो तो संज्ञाहीन हो गई थी। लड़की की लाश गोद में लिए उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवता से पूछ रही हो।
2: क्या सारी विपत्तियां मुझे पर?
1: अंधेरा होता जाता था, पर बाबूजी का पता नहीं, कुछ मालूम भी नहीं, वो कहां गए हैं। 11 बजे थे। सहसा किसी ने द्वार खोला, देवी उठकर खड़ी हो गई, समझी बाबूजी आ गए। उसका हृदय उमड़ आया और वो रोती हुई बाहर आई, पर ये बाबूजी ना थे, ये तो पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकीकात करने आए थे। 5 बजे की घटना थी, तहकीकात होने लगी रात 11 बजे। घंटे भर तक तहकीकात होती रही। जब सबके बयान लिखकर दरोगा जी चलने लगे तो देवी ने कहा,
2: आप उस मोटर का पता लगाएंगे?
3: अब तो शायद ही उसका पता लगे।
2: तो उसको कुछ भी सजा नहीं होगी?
3: मजबूरी है, किसी को नंबर भी तो नहीं मालूम।
2: सरकार इसका कुछ इंतजाम नहीं करती? अरे गरीबों के बच्चे इसी तरह कुचले जाते रहेंगे।
1: बाबू श्याम किशोर 12 बजे के बाद नशे में चूर घर पहुंचे। उन्हें ये खबर रस्ते में ही मिल गई थी। रोते हुए घर में दाखिल हुए। देवी भरी बैठी थी, सोच रखा था आज चाहे जो हो जाए पर फटकारूंगी जरूर। पर उनको रोते देखा तो सारा गुस्सा गायब हो गया, खुद भी रोने लगी। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। इस विपत्ति ने दोनों के हृदयों को एक दूसरे की ओर बड़े जोर से खींचा। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ उनमें फिर पहले का सा प्रेम जागृत हो गया है। प्रातःकाल जब लोग दाह क्रिया करके लौटे तो
4: तुम्हारा जी अकेले कैसे लगेगा?
2: तुम 10-5 दिन की छुट्टी ना ले सकोगे?
4: यही तो मैं भी सोच रहा हूं, 15 दिन की छुट्टी ले लूं।
1: श्याम बाबू दफ्तर से छुट्टी लेने चले गए। दूसरे दिन बाबू श्याम किशोर घर पर ही थे कि मुन्नू ने आकर सलाम किया। श्याम किशोर ने जरा कड़ी आवाज में पूछा,
5: ये क्या है जी, तुम क्यों बार बार यहां आया करते हो?
6: मालिक, क्या बताऊं मालिक, कल की बात जो भी सुनता है उसी को रंज होता है। अरे मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, अब नौकर नहीं हो तो क्या, सरकार का नमक तो खा चुका हूं, भला वो कभी हड्डियों से निकल सकता है? कभी कभी हाल हवाल पूछने आ जाता हूं मालिक, जब से कल वाली बात सुनी है ऐसा दुख हो रहा है मालिक की क्या कहूं। कैसी प्यारी प्यारी बच्ची थी, फूल सी बच्ची, देखकर दुख दूर हो जाता था। अरे मुझे देखते ही मुन्नू मुन्नू करके दौड़ी चली आती थी। अरे जब गैरों का ये हाल है तो हुजूर के दिल पर जो कुछ बीत रही होगी हुजूर ही जानते होंगे।
4: ईश्वर की मर्जी में इंसान का क्या चारा?
6: मालकिन तो और भी बेहाल होंगी हुजूर, मैं तो उसे शाम सवेरे खिला लिया करता था, माँ तो दिन भर साथ रहती थी। मैं तो काम धंधों में भूल भी जाऊंगा, वो कहां भूल सकती हैं, उनको तो सारी जिंदगी का रोना है।
1: पति को मुन्नू से बातें करते सुनकर देवी ने कोठे पर से आंगन की ओर देखा। मुन्नू को देखकर उसकी आंखों में बेअख्तियार आंसू भर आए।
2: मुन्नू, मैं तो लुट गई।
6: हुजूर, हुजूर अब सबर कीजिए हुजूर, रोने धोने से क्या फायदा। अरे जो बेईमान है दूसरों का गला काटते फिरते हैं उनसे तो ऊपर वाला कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं करता उनको, और जो सीधे सच्चे हैं उन्हीं पर आफत आती है। अरे वाह रे तेरा करम।
1: मुन्नू देवी को दिलासा देता रहा, श्याम बाबू भी उसकी बातों का समर्थन करते जाते थे। जब वो चला गया तो
4: आदमी तो कुछ बुरा नहीं मालूम होता,
2: मोहब्बती आदमी है, रंज ना होता तो यहाँ क्यों

0: 15 दिन गुजर गए। बाबू साहब फिर दफ्तर जाने लगे। मुन्नू इस बीच में फिर कभी ना आया। अब तक तो देवी का दिन पति से बातें करने में कट जाता था, लेकिन अब उनके चले जाने पर उसे बार बार शारदा की याद आती। प्रायः सारा दिन रोते ही कटता था। मोहल्ले की औरतें आती थीं, लेकिन देवी का मन उनसे नहीं मिलता था। वे झूठी सहानुभूति दिखाकर देवी से कुछ ऐंठना चाहती थीं। एक दिन कोई 4 बजे मुन्नू आया और आंगन में खड़ा होकर बोला,
1: मालकिन मालकिन मालकिन, मैं हूं मुन्नू, जरा नीचे आइए।
2: क्या काम है कहो तो।
1: मालकिन जरा नीचे तो आइए।
2: अच्छा।
0: देवी नीचे आती है।
1: मालकिन, रजा मियां बाहर खड़े हैं और हुजूर से मातम पुरसी करने आए हैं।
2: जाकर कह दो कि ईश्वर की जो मर्जी थी वही हुआ।
0: रजा दरवाजे पर खड़ा था। ये बातें उसने साफ सुनी और बाहर से ही बोला,
3: बहुजी,
4: खुदा जानता है, जब से बिटिया की खबर सुनी है दिल दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। मैं जरा दिल्ली चला गया था, आज ही लौटा हूं। अगर मेरी मौजूदगी में यह वारदात हुई होती तो मोटर वाले को बिना सजा कराए नहीं छोड़ता, फिर चाहे वो मोटर किसी राजा की ही क्यों ना होती, सारा शहर छान डालता। इतना बड़ा हादसा हो गया और बाबूजी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, ये भी कोई बात है? ऐसे मोटर चला के क्या कोई किसी को भी मार डालेगा? फूल सी मासूम बच्ची को जालिमों ने मार डाला और मैं बिटिया के लिए खिलौने लेकर आया था। मुझे क्या मालूम था यहां आप पर यह सितम टूट पड़ा है। मुन्नू, ये तावीज ले जाकर बहू जी को दे दे, इसे वो अपने जूड़े में बांध ले। अल्लाह ने चाहा तो इन्हें किसी तरह की कोई दहशत कोई खटका नहीं रहेगा। मुझे मालूम है, मैं जानता हूं बहू जी को बुरे बुरे ख्वाब दिखाई देते होंगे, रातों की नींद उचट जाती होगी, दिल घबराता होगा। ये सारी शिकायतें इस तावीज से दूर हो जाएंगी। मैंने एक बहुत पहुंचे हुए फकीर से यह तावीज हासिल किया है, ले ये दे दे बहू जी को।
0: इसी तरह से रजा और मुन्नू उस वक्त एक ना एक बहाने से द्वार से तब तक न टले जब तक बाबू साहब आते दिखाई नहीं दिए। श्याम किशोर ने जब उन दोनों को जाते देख लिया तो ऊपर जाकर गंभीर भाव से बोले,
5: राजा क्या करने आया था?
2: यूं ही मातम पुरसी करने आया था, आज ही दिल्ली से आया है, ये खबर सुनकर दौड़ा आया था।
5: मर्द मर्दों से मातम पुरसी करते हैं या औरतों से?
2: तुम ना मिले तो मुझी से शोक प्रकट करके चला गया।
5: इसके ये माने हैं कि जो आदमी मुझसे मिलने आए वो मेरे ना रहने पर तुमसे मिल सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
2: सबसे मिलने मैं थोड़ी जा रही हूँ।
5: तो रजा क्या मेरा साला है या ससुरा?
2: तुम तो जरा जरा सी बात पर झल्लाने लगते हो।
5: ये जरा सी बात है? एक भले घर की स्त्री एक शोहदे से बातें करे, ये जरा सी बात है? तो बड़ी सी बात किसे कहते हैं? ये जरा सी बात नहीं है कि यदि मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूं या गला घोट दूं तो भी मुझे पाप नहीं लगेगा। देख रहा हूं फिर तुमने वही रंग पकड़ा है। इतनी बड़ी सजा पाकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली, अब की क्या मुझे मारना चाहती हो?
0: देवी सन्नाटे में आ गई। एक तो लड़की का शोक और उस पर ये अपशब्दों की बौछार और भीषण आक्षेप, उसके सिर में चक्कर सा आ गया। बैठकर रोने लगी।
2: इस जीवन से तो मौत ही अच्छी।
5: यही होगा, मत घबराओ, यही होगा। तुम मरना चाहती हो तो मुझे भी तुम्हारे अमर होने की आकांक्षा नहीं है। जितनी जल्दी तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए उतना ही अच्छा है। खुल में कलंक तो नहीं लगेगा?
2: क्यों एक अबला पर इतना अन्याय करते हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती?
5: मैं कहता हूं चुप रहो।

0: फिर बोले जाती हो, मैं उठकर सिर तोड़ दूंगा।
1: तो सिर तोड़ दो। अरे सिर क्यों तोड़ दोगे, कोई जबरदस्ती है?
0: अच्छा तो बुला, देखिए तेरा कौन हिमायती है।
2: ये कहते हुए बाबू साहब झल्ला कर उठे और देवी को कई थप्पड़ और घूंसे लगा दिए, मगर वो न रोई न चिल्लाई न जबान से एक शब्द निकाला, केवल अर्थ शून्य नेत्रों से पति की ओर ताकती रही, मानो ये निश्चय करना चाहती थी कि ये आदमी है या कुछ और। जब श्याम किशोर मार पीट कर अलग खड़े हो गए तो देवी ने कहा,
1: दिल के अरमान अभी ना निकले हों तो और निकाल लो, फिर शायद ये अवसर ना मिले।
0: देवी सिर काट लूंगा, सिर। तू है किस फेर में?
2: ये कहते हुए नीचे चले गए, झटके के साथ किवाड़ खोले और धमाके के साथ बंद कर दिए और कहीं चले गए। अब देवी की आंखों से आंसू की नदी बहने लगी। रात के 10 बज गए पर श्याम किशोर घर न लौटे। रोते रोते देवी की आंखें सूज आईं। कहते हैं क्रोध में मधुर स्मृतियों का लोप हो जाता है। देवी को ऐसा ज्ञात होता है कि श्याम किशोर को उसके साथ कभी प्रेम ही ना था। हाँ कुछ दिनों वो उसका मुंह अवश्य जोहते थे, लेकिन वो बनावटी प्रेम था। उसके यौवन का आनंद लूटने के लिए ही उससे मीठी मीठी प्यार की बातें की जाती थीं, उसे छाती से लगाया जाता था, उसे कलेजे पर सुलाया जाता था, वो सब दिखावा था, स्वांग था। उसे याद ही ना आता था कि कभी उससे सच्चा प्रेम किया गया हो। देवी को ऐसी शंका होने लगी कि कहीं श्याम किशोर आते ही आते सचमुच उसका गला ना दबा दे या छुरी ना भोंक दे। वो समाचार पत्रों में ऐसी कई हरजाइयों की खबरें पड़ चुकी थी, शहर में ही ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी, मारे भय के थरथरा रही थी। यहां रहने से प्राणों की कुशलता ना थी। देवी ने कपड़ों की एक छोटी सी बकुची बांधी और सोचने लगी कि यहां से कैसे निकलूं, और फिर यहां से निकलकर जाऊं तो जाऊं कहां। कहीं इसी वक्त मुन्नू का पता लग जाता तो बड़ा काम निकलता, वो मुझे क्या मैके ना पहुंचा देता। एक बार मैं के पहुंच भर जाती फिर तो लाला सिर पटक पटक कर रह जाते, भूल कर भी ना आऊं। देवी ने जाकर नीचे के किवाड़ बंद कर दिए, फिर संदूक खोलकर अपने सारे जेवर और रुपए निकालकर बकुची में बांध लिए। सब के सब करेंसी नोट थे, विशेष बोझ भी ना हुआ। एकाएक सदर दरवाजे में किसी ने जोर से धक्का मारा। देवी सहम उठी, ऊपर से झांक कर देखा, श्याम बाबू थे। उसकी हिम्मत न पड़ी कि जाकर द्वार खोल दे, फिर बाबू साहब ने इतने जोर से धक्के मारने शुरू किए मानो किवाड़ ही तोड़ डालेंगे। इस तरह द्वार खुलवाना ही उनके चित्त की दशा को साफ प्रकट कर रहा था। देवी शेर के मुंह में जाने का साहस न कर सकी। देवी की रही सही हिम्मत जाती रही। श्याम किशोर नशे में चूर थे, होश में शायद दया आ जाती, इसलिए शराब पीकर आए थे।
1: किवाड़ तो ना खोलूंगी, अरे चाहे तोड़ ही डालो, अब तुम मुझे इस घर में पाओगे ही नहीं तो मारोगे कहां से? अरे तुम्हें खूब पहचान गई मैं।
2: श्याम किशोर 15-20 मिनट तक शोर मचाने और किवाड़ हिलाने के बाद उल जुलूल बकते चले गए और 2-4 पड़ोसियों ने जब फटकारे लगाना शुरू किया।
3: आप भी तो पढ़े लिखे आदमी होकर आधी रात को घर चलते हैं।
4: नींद ही तो है, नहीं खुलती तो क्या कीजिएगा, जाइए किसी यार दोस्त के घर लेटे रहिए, सवेरे आइएगा।
2: श्याम किशोर के जाते ही देवी ने बकुची उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरी। जरा देर उसने कान लगाकर आहट ली कि कहीं श्याम किशोर खड़े तो नहीं है। जब विश्वास हो गया कि वो चले गए तो धीरे से द्वार खोला और बाहर निकल आई। उसे जरा भी क्षोभ नहीं था, जरा भी दुख नहीं था, बस केवल एक इच्छा थी, यहां से बचकर कहां जाऊं। कोई ऐसा आदमी ना था जिस पर वो भरोसा कर सके, जो इस संकट में काम आ सके। था तो बस यही मुन्नू सफाई वाला। मैके जाने का अब उसका इरादा नहीं था, उसे भय होता।

0: था कि मैके में श्याम किशोर से वो अपनी जान नहीं बचा सकेगी। उसे यहां ना पाकर वो अवश्य उसके मैके जाएगा और उसे जबरदस्ती खींच लाएगा। वो सारी यातनाएं, सारे अपमान सहने को तैयार थी, केवल श्याम किशोर की सूरत नहीं देखना चाहती थी। थोड़ी दूर पर चौराहा था, कई तांगे वाले खड़े थे। देवी ने एक इक्का किया और उससे स्टेशन चलने को कहा। फिर देवी ने रात स्टेशन पर काटी। प्रातःकाल उसने एक तांगा किराए पर किया और पर्दे पर बैठ चौक जा पहुंची। अभी दुकानें ना खुली थी, लेकिन पूछने पर रजा मियां का पता चल गया। उसकी दुकान पर एक लड़का झाड़ू दे रहा था। देवी ने उसे बुलाकर कहा, जाकर रजा मियां से कह दे कि शारदा की अम्मा तुमसे मिलने आई है, अभी चलिए। 10 मिनट में रजा और मुन्नू वहां आ पहुंचे।
1: तुम लोगों के पीछे मुझे घर छोड़ना पड़ा। कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया। जो कुछ हुआ वो मैं फिर कहूंगी। मुझे कहीं एक घर दिला दो, घर ऐसा हो कि बाबू साहब को मेरा पता न मिले, नहीं तो वो मुझे जीती न छोड़ेंगे।
0: रजा ने मुन्नू की ओर देखा, मानो बोल रहा हो।
2: देखा अपनी चाल कितनी सही पड़ी। बहू जी आप फिक्र न करें, ऐसा घर दिला दूंगा कि बाबू साहब के बाबा साहब को पता नहीं चलेगा और आपको वहां किसी तरह की कोई तकलीफ भी नहीं होगी। हमें आप अपना ही समझिएगा, आपके पसीने की जगह हम अपना खून बहा देंगे। बुरा मत मानना बहू जी, सच तो यह है कि बाबू साहब आपके लायक तो थे ही नहीं।
3: हाँ ये बात बिल्कुल सही है, और हुजूर मानते ही नहीं तो क्या करूं। अच्छा कभी दिखा दूंगा तब तो मानिएगा।
2: अच्छा अच्छा आप दिखाना बाद में, अभी बहू जी को मेरे घर पहुंचा दे और देख ऊपर ले जाना, तब तक मैं एक मकान देख कर आता हूं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
1: आपके घर में बहुत सी औरतें होंगी?
2: कोई नहीं, ज्यादा नहीं बहू जी, सिर्फ एक बुढ़िया मामी है, वो आपके लिए कहारन बुला देगी, बस आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप चलिए मैं मकान देख कर आता हूँ।
1: जरा बाबू साहब की तरफ भी होते आइएगा, देखना घर आए कि नहीं।
2: बाबू साहब के नाम से तो मुझे चिढ़ हो गई है, अगर मेरे सामने आ गए तो फालतू मेरा उनसे झगड़ा हो जाएगा। जो मर्द आप जैसी हुस्न परी की कदर न कर सके वो क्या आदमी है?
3: बहुत ठीक कहते हो भैया, बिल्कुल ठीक कहते हो। ऐसी शरीफ जादी को ना जाने किस मुंह से डांटते हैं। अरे मुझे तो इतने दिन हुजूर की गुलामी करते हो गए, कभी भी एक बात ना कही।
0: रजा मकान देखने गया और तांगा रजा के घर की तरफ चला। देवी के मन में इस समय एक शंका का आभास हुआ, कहीं ये दोनों सचमुच शोहदे तो नहीं है। लेकिन कैसे मालूम हो? यह सत्य है कि देवी ने जीवन पर्यंत के लिए स्वामी का परित्याग किया था, पर इतनी ही देर में उसे कुछ पश्चाताप होने लगा था। अकेली एक घर में कैसे रहेगी, बैठी बैठी क्या करेगी, ये कुछ उसकी समझ में नहीं आता था।
1: क्यों ना घर लौट चलूं, ईश्वर करे वो अभी घर ना आए हो। मुन्नू तुम जरा दौड़ कर देखो तो बाबूजी घर आए कि नहीं।
3: अरे अरे हुजूर आप चलकर आराम से बैठे, मैं देखाता हूँ।
1: मैं अंदर नहीं जाऊंगी।
3: अरे मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ हजूर कि घर बिल्कुल खाली है, आप हम लोगों पर शक करती हैं। अरे हम वो लोग हैं कि आपका हुक्म पाए तो आग में कूद पड़े।
0: देवी इक्के से उतरकर अंदर चली गई। चिड़िया एक बार पकड़े जाने पर फड़फड़ाई भी, किंतु पैरों में लाश

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत अभी आपने सुना मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की 8वीं कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 12:58 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में महिला और बाल विकास पर आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इस सम्मेलन के दौरान सभी राज्यों से आए मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा महिला सशक्तिकरण और बाल संरक्षण पर चर्चा की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज हरदा जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में उद्यमियों, युवाओं, किसानों और आम लोगों से संवाद करेंगे। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ यादव समाधान ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव आज आगरमालवा के नवीन कृषि उपज मंडी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में उपस्थित किसानों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। केंद्र सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की बिक्री पर मार्जिन की अधिकतम सीमा MRP का 30% तय कर दिया है। इस फैसले से दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आ सकती है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण दवाओं की सूची तय होने के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। विश्व डाक दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के डाकघरों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि आज इंटरनेट और मोबाइल के दौर में भी डाक विभाग पत्रों, पार्सल, बैंकिंग, बीमा और सरकारी सेवाओं के जरिए लोगों को जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। ग्वालियर में जिला प्रशासन ने 19 पटवारियों को निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व, EKYC और CM हेल्पलाइन की शिकायतें लंबित रहने और न्यायालयीन मामलों में देरी के चलते की गई है। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज रांची में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर का 1 बज रहा है। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा।

कार्यक्रम महिला सभा में स्वागत है सखियों आपका। आपके साथ हूँ मैं दुर्गेश नंदिनी। नमस्कार। भारी डिस्काउंट का देकर हमको लालच भारी, लूट ले जाते हैं ये करके पूरी तैयारी। सस्ते के चक्कर में जो क्लिक किया बटन, बैंक अकाउंट ही खाली कर गई ये बीमारी। जी हाँ सखियों, ये पंक्तियाँ इशारा कर रही है साइबर ठगों की ओर। सखियों, डिजिटल युग में ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर साइबर ठगों द्वारा महिलाओं को तेजी से निशाना बनाया जा रहा है। इससे बचने के लिए तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाएं या फिर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। अक्सर किसी सामान के ऑर्डर में समस्या आने पर गूगल पर सर्च करने पर मिलने वाली फर्जी कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करने पर ठग फोन की सेटिंग या स्क्रीन शेयर करवाकर बैंक खाता खाली कर देते हैं। सामान का ऑर्डर रद्द होने या रिफंड के नाम पर ठग नया QR कोड भेजकर या UPI पिन डालकर पैसा निकाल लेते हैं। इन ठगी से बचने के लिए सखियों, हमेशा भरोसेमंद और आधिकारिक शॉपिंग एप्स या वेबसाइटों का ही उपयोग करें। किसी

दौरान सोशल मीडिया पेज से खरीदारी करने से पहले समीक्षा जरूर जांच लें। किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपने फोन में एनीडेक्स जैसे ऐप डाउनलोड न करें। अपना ओटीपी, यूपीआई पिन या पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें। धोखाधड़ी होने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के नंबर 1915 पर भी संपर्क किया जा सकता है। बस इन बातों का ध्यान रखें और ऑनलाइन शॉपिंग की धोखाधड़ी से सुरक्षित रहें। सचिव, हमारा पर्यावरण दिन ब दिन प्रभावित हो रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के नेतृत्व में चलाया जाने वाला एक वैश्विक जन आंदोलन मिशन लाइफ की हम आज बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल दैनिक आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही इसका मुख्य लक्ष्य उपयोग करो और फेंक दो वाली विनाशकारी संस्कृति को बदलकर पर्यावरण के प्रति सचेत और जिम्मेदार जीवन शैली को बढ़ावा देना है। सखियो, मिशन लाइफ अभियान जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक छोटे छोटे सुधारों पर जोर देता है। साथ ही ऐसे लोगों का समूह तैयार करना है जो धरती को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव लाए। इस मिशन से सखियो तीन चरण है, मांग में परिवर्तन, आपूर्ति में परिवर्तन और नीति में परिवर्तन। साथ ही सखियों, दैनिक जीवन से जुड़े कार्य जैसे अनावश्यक लाइट और पंखे बंद रखना, एलईडी बल्बों का उपयोग करना, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना और जैविक स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, भोजन की बर्बादी रोकना, कचरे को कम करना और रिसाइकिलिंग पर जोर देना शामिल है। सखियों, भारत की पारंपरिक संस्कृति और प्राचीन ग्रंथों में हमेशा से प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहने और संसाधनों के संरक्षण की सीख दी गई है, तो हमें इसमें अपना सहयोग दर्ज करना है। और अब सुन लेते एक प्यारा सा गीत।

0: युगल गीत फिल्म तीन देविया से था और स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के थे। और आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय है महिला सुरक्षा कानून और जागरूकता। इस विषय पर बातचीत कर रही हैं एडवोकेट पूजा भोगले।
1: सखियों, भारत में महिलाओं की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन इनका पूरा लाभ तभी मिल सकता है जब समाज में इनके प्रति व्यापक जागरूकता हो। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज हमारी बातचीत का विषय है महिला सुरक्षा कानून और जागरूकता। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं एडवोकेट पूजा भोगले। नमस्कार पूजा जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद
1: पूजा जी। सर्वप्रथम तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी होना क्यों जरूरी है?
2: महिलाओं को अपनी सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी इसलिए होना चाहिए कि सबसे पहले लीगल अवेयरनेस हर महिला के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन का पहला स्टेप है। अगर महिला को अपने राइट्स और कानून की बेसिक जानकारी है तो वो किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में ज्यादा कॉन्फिडेंटली और सही तरीके से डिसीजन ले सकती हैं। तो इसलिए महिलाओं को ये सारी जानकारियाँ होनी बहुत जरूरी है।
1: पूजा जी, बहुत ही अच्छे से आपने हमारे प्रश्न का समाधान किया। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर किसी महिला को घर में पति या ससुराल वालों द्वारा शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए?
2: पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो किसी भी तरीके का हरासमेंट होता है उनके साथ या फिर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, फिजिकल इंजरी अगर होती है तो उनको सबसे पहले कंप्लेन करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि हमें कहाँ बताना है, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि हम 118 और 112 में कॉल करके हमारी कंप्लेन हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कंप्लेन बॉक्स होते हैं जहाँ पर हम हमारे सारी अपनी कंप्लेन साझा कर सकते हैं।
1: पूजा जी, यदि किसी महिला को अचानक खतरा महसूस हो या उसकी सुरक्षा को तत्काल खतरा हो तो वो किससे और कैसे मदद ले सकती है, ये भी आप हमारी सखियों को बताएं प्लीज।
2: देखिए, अगर कभी ऐसा होता है कि हम घर से नहीं निकल पाते हैं और हमको घर में ही इस तरीके की कोई हरासमेंट होती है या हमारे साथ कोई ऐसी प्रताड़ना की जाती है जिसे हम जाकर बाहर नहीं बता सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक कॉल करके या अपना कंप्लेन किसी से शेयर करके कर सकते हैं या किसी से लीगल एडवाइस ले सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज होते हैं, वहाँ हम देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आजकल महिलाओं के फोन में ये सारे नंबर्स होना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि 118 और 112 जिस तरीके से कोई हरासमेंट होती है या कोई प्रताड़ना की जाती है तो हम उनको कॉल करके अपनी सारी चीजें हम बता सकते हैं।
1: बहुत ही अच्छा समाधान मिल रहा है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंदौर शहर में अगर किसी महिला के साथ कोई अपराध या उत्पीड़न होता है तो वो कहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और किन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकती है?
2: बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो होम मेकर्स होती है ना, जो घर को संवारती हैं, जो घर में रहती हैं, जिनको अपने लीगल राइट्स के बारे में पता नहीं होता है। तो हमारे यहाँ कोर्ट में भी, जैसे कि हमारे पास भी कोई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा विक्टिम्स होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, वो आकर हमसे शेयर करते हैं कि आज हमारे साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं या हमारे साथ ऐसा हरासमेंट हुआ है, तो हम उनको एक काउंसलिंग तो देते ही हैं। साथ में हर एक सिटी में, जैसे इंदौर सिटी की बात आपने कही है, तो इंदौर सिटी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक DLSA डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के नाम से एक अथॉरिटी बनी हुई है। उस अथॉरिटी में भी जाकर आप अपना केस, अपनी सारी चीजें, जो भी आपके साथ हुआ है, जितनी घटना आपके साथ हुई है, वो आप जाकर अपना बता सकते हैं और वहाँ की अथॉरिटी आपको एक अच्छे लॉयर प्रोवाइड करेंगे और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे।
1: जी जी। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए किसी महिला के पास वकील की फीस देने के लिए पैसे नहीं है तो क्या उसे मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है?
2: बिल्कुल मिल सकती है, और हर महिला का ये अधिकार है कि वो अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी भी तरीके से किसी भी अच्छे लॉयर के पास जाकर या फिर काउंसलिंग लेकर ले सकती है। और इसका एक बहुत अच्छा ये बताना चाहती हूँ कि फ्री लीगल एड, जैसे कि मैंने अभी बताया कि लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो फ्री लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है जिसको लीगल एड बोला जाता है, वो हर कोर्ट में आप देख सकते हैं। वहाँ आप आकर अपनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो भी होता है वहाँ आप ले सकते हैं। और एक वुमेन सेल भी एक बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं वुमेन स्टॉप सेंटर, और हम ये भी बोल सकते हैं कि वहाँ पर

0: एक कमेटी बनी होती है। अब ये कमेटी आप देखेंगे कि पॉश की जो कमेटी होती है वो एक ऐसी कमेटी होती है जहाँ पर वुमेन से रिलेटेड प्रोविजंस दिए जाते हैं, और जहाँ पर जिस कंपनी में 10 मेंबर से ज्यादा एम्प्लॉइज होते हैं वहाँ पर ये कमेटी को रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी होता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अंडरस्टैंडिंग में ये पूरी तरीके से हम हर एक कंपनी जो कि 10 एम्प्लॉइज से ज्यादा होती है वहाँ पर ये एक्ट लिया जाता है, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरनल कमेटी एक्सटर्नल कमेटी भी होती है, जहां पर किसी भी वुमन के साथ अगर कोई हरासमेंट हुआ हो, कोई छेड़खानी हुई हो या किसी भी तरीके की कोई बदतमीजी की गई हो, वहां पर आकर वो उस कमेटी में अपनी बात को रख सकती है, उस कंप्लेंट को जाकर वहां पर बता सकती है।
1: तो ये तो बात हुई कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की। अब हम बात करते हैं आजकल सोशल मीडिया और साइबर क्राइम से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ रही है। अगर किसी महिला की फोटो या सोशल मीडिया अकाउंट का गलत इस्तेमाल हो रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए?
0: आजकल हर कोई, जैसे महिला है तो वो भी एक सोशल मीडिया के थ्रू अपने सारी पोस्ट जो होती हैं या जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो अपडेट करती हैं, स्टेटस डालते हैं हम सब, और हम सबको ये लगता है कि ये सेफ है। बट क्या होता है कि हमको उस चीज की एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि हम किस तरीके का उसको यूज कर रहे हैं। अगर हमारे साथ कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं जैसे फेक प्रोफाइल करके कोई हमारा अकाउंट हैक कर लेता है, जैसे फेसबुक पे हुआ है सपोज करें, तो सबसे पहले हमको रिपोर्टिंग करनी होती है, हम वहाँ रिपोर्ट कर दें। सेकंड थिंग, हमको हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड होते हैं वो हमें संभाल के रखने चाहिए एज एन एविडेंस के रूप में, कि कहीं हम कंप्लेन करते हैं तो हमारे पास सारी चीजें होती हैं कि हम वहां पर जब भी कंप्लेन करने जाते हैं तो हमारे पास हो। और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम 19340 पे कंप्लेन कर सकते हैं एज इन साइबर क्राइम के सेल में, और हम रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं cybercrime.org.in में।
1: बहुत ही विस्तार से आप जानकारी दे रही हैं, हमारी सखियों को निश्चित रूप से मार्गदर्शन मिल रहा होगा। पूजा जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिला अपनी शिकायत करते समय किन जरूरी बातों और दस्तावेजों का ध्यान रखे ताकि आगे कानूनी कार्रवाई में परेशानी न हो।
0: किसी भी महिला के साथ कभी भी कुछ गलत होता है तो सबसे पहले अगर वो किसी भी ऐसे लीगल एडवाइस अगर लेने जाती हैं, सपोज करो वो किसी लॉयर के पास गई, अपनी सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने शेयर करी, तो सबसे पहले उनके पास जाकर अपने सारे रियल फैक्ट्स के बारे में उनको बताना है जो उनके साथ आप बीती हुई है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उनको ये रखना है कि उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमें डिलीट नहीं करने हैं, हमें सारे व्हाट्सएप की जितनी भी हमारी चैटिंग्स हैं या कोई ऐसा एविडेंस है उसको हमें संभाल के रखना है। और जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या कंप्लेन करने जाते हैं, पुलिस की सहायता लेते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको दिखाने होते हैं वहां पर। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके साथ कोई भी किसी भी तरीके का कुछ गलत काम हुआ है या गलत तरीका किसी ने यूज किया है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तब वहां आपको काम आते हैं।
1: पूजा जी, अंत में आप सभी महिलाओं और समाज को उनकी सुरक्षा और अधिकारों के संबंध में क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं सारी महिलाओं को एक सिर्फ छोटा सा मैसेज ये देना चाहूंगी कि हर तरीके से लीगल अवेयरनेस रखिए, लीगल रेमेडी ही आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन है, तो आप सतर्क रहें और सेफ रहें।
1: पूजा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और विषय से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सखियों, अभी हमने सुनी प्रेरक भेंट वार्ता, विषय था महिला सुरक्षा कानून और जागरूकता। जानकारी दे रही थी एडवोकेट पूजा भोगले। और अब सुनते हैं सुपरहिट फिल्म तलाश का युगल गीत, स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के।

सिक्योर मी टाइम में आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिजाइन से महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बन सकती हैं। जी हां सखियों, आज के समय में महिलाओं के लिए ये एक बेहतरीन और फायदेमंद जरिया है। सखियों, डिजिटल डिजाइन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी एक स्किल को चुनकर उसमें माहिर हो सकती हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट बैनर, पोस्टर्स, बिजनेस कार्ड और लोगो बनाना इसमें शामिल है। इसी तरह सखियों, यूआई यूएक्स डिजाइन, इसमें मोबाइल एप्स और वेबसाइट के लेआउट और स्क्रीन को यूजर फ्रेंडली बनाना है। सखियों, इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। फैशन और टेक्सटाइल डिजाइन, इसमें सखियों डिजिटल टूल्स का उपयोग करके कपड़ों के पैटर्न, प्रिंट्स और फैशन डिजाइन तैयार करना होता है। और अब बात करते हैं सखियों वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन की। इसमें रील्स, यूट्यूब वीडियो और 2D 3D एनिमेशन बनाना होता है। अब बात करते हैं कि डिजिटल डिजाइन सीखने के बाद कमाई के रास्ते खोलने की, तो आप फ्रीलांसिंग, जी हां, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाकर देश विदेश के क्लाइंट्स के लिए काम कर सकती हैं। आप सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम के जरिए स्थानीय व्यवसायों के लिए डिजाइनिंग सर्विस देकर अपनी खुद की मिनी एजेंसी शुरू कर सकती हैं। सखियों, आज बहुत सी आईटी और मार्केटिंग कंपनियां महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे फुल टाइम या पार्ट टाइम नौकरी का मौका देती हैं। सबसे बड़ी बात सखियों, इसमें उम्र, डिग्री या बड़े इन्वेस्टमेंट की कोई भी पाबंदी नहीं होती। आप घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी आर्थिक आजादी

सखियों अभी हम नहीं जा रहे हैं, बहुत जरूरी आपसे बातें करनी है। जी हाँ सखियों, वर्तमान समय में महिलाओं को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सशक्त बनने के लिए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जानकारी होना आवश्यक है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता, डिजिटल सुरक्षा और कानूनी अधिकार जरूरी विषय बन चुके हैं। सखी वित्तीय साक्षरता की बात करें तो आज के दौर में महिलाओं को सिर्फ पैसे बचाना ही नहीं बल्कि उसका सही निवेश करना भी आना चाहिए। जी हाँ, म्यूचुअल फंड, SIP, FD, शेयर मार्केट और सरकारी योजनाओं की समझ होना भी जरूरी है। अपने मासिक खर्चों का प्रबंधन करना और इनकम टैक्स और टैक्स सेविंग विकल्पों के बारे में जानकारी होना भी आवश्यक है। साथ ही सखियों, अपने और परिवार के लिए सही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस चुनने की समझ भी होना जरूरी है। क्या सोच रही हैं? यही ना कि मैं सही बोल रही हूँ? जी हाँ बिल्कुल। और सखियों, हेल्थ टिप्स में आज हम बात कर रहे हैं व्रत उपवास की। जी हाँ, नवरात्र नजदीक है और हमारी सखियाँ जो पूरे 9 दिन व्रत रखती हैं, उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, तभी तो गरबा रासोल्लास का आप आनंद ले पाएंगी। जी हाँ सखी, इस दौरान पानी, नारियल पानी का सेवन भरपूर करें ताकि डिहाइड्रेशन और चक्कर आने की समस्या न हो। साथ ही नींबू पानी, छाछ और मखाने की खीर का सेवन करें। ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स बनाए रखते हैं। पौष्टिक फलाहार करें, तली भुनी चीजों का सेवन न करें। व्रत खोलते समय एकदम से भारी भोजन न करें। साथ ही व्रत के दिनों में भारी एक्सरसाइज से भी बचें और तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरी परामर्श जरूर लें। सखी, मन तो कर रहा है ठहर जाऊं पर समय का तकाजा है। आपको बता दें, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार। अब दुर्गेश नंदिनी को दे अनुमति। नमस्कार।

अभी सुन रही थी सखिया कार्यक्रम महिला सभा। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोपाल से प्रसारित किया जाएगा। प्रतीक्षा करें।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं चंद्रभूषण पाठक और साथी, इनसे आप सुनेंगे देवी गीत और इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे मिताली मुखर्जी के गाए गीत और भजन। शुरुआत करते हैं देवी गीत से।

0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे।
1: नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें,
0: तो सुनते रहिए
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: इस समय आप हैं हमारे साथ।
4: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गाना, जिसको हमने लिया है फिल्म संतोष से। ये लता जिसमें नहीं है, संतोष आनंद का लिखा हुआ है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, सुनिए ये गीत।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:10 होने को हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:10 होने को हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार।

डाक सेवा जनसेवा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल संचार के इस युग में भारतीय डाक सेवा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदलाव का प्रयास कर रही है। श्री सिंधिया ने कहा कि भारतीय डाक निस्वार्थ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़ें, ताकि फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। इन प्लेटफॉर्म में EDAR, वाहन सारथी और इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो शामिल हैं। इनके जुड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और इंश्योरेंस के रिकॉर्ड और पहले के क्लेम का इतिहास आसानी से शेयर किया जा सकेगा। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा और करीब 27,500 दर्शकों के स्टेडियम में पहुंचने की उम्मीद है। स्टेडियम में दर्शकों के प्रवेश के लिए रेलिंग लगाने और कुर्सियों की सफाई सहित तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सुरक्षा के लिए स्टेडियम में करीब 160 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और फेस रिकॉग्निशन तकनीक से भी निगरानी की जाएगी। वहीं श्रृंखला का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मैच विद्युत वितरण कंपनी के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान CTI नयागांव में PM सूरम कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने खरीफ फसल की कटाई के दौरान किसानों से पराली न जलाने और वैकल्पिक उपयोग अपनाने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने पहुंचाने और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। नीमच और शिवपुरी जिले में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के उद्देश्य से मतदान केंद्रों पर 3 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है और झाबुआ के ग्राम गढ़वाड़ा देवझिरी में सेवा संकल्प अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत 225,500 पौधे रोपित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार, मैं कनकलता। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टाना सभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। जिसने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर

रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आस पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में आईआईटी जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का पांचवा देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा रुपये से भी कम रह गई है। 550 मिलियन
1: यूजर्स। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G

0: उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी के और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
1: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जुड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हित योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वालों के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
2: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंगानुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023 929 गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उन्हें व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM लगाए गए रोक H1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा

H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक की उछाल के साथ 22,514 पर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची

0: नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने भारत वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा को लिखा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। यह है घंटा घर चौक खंडवा से लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। डुमराव बिहार से लिखने वाले हैं W अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सरीमपुर बक्सर से गाना और दिव्या भारती। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री। शाही है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से स्टार रेडियो श्रोता संघ से लिखने वाले हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। और थाना रोड बक्सर से जीवत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी। इन सभी की फरमाइश में हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने, आवाज़ें मुकेश और साथियों के हैं, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना है, शंकर जी किशन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आए है, लिखने वाले हैं दुर्गई सेल से चंदू कुलकर्णी, हेमलता सी आर कुलकर्णी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से, लिखने वाले हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है धामड़ी मनोरा महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और दूसरे सदस्य। ये है मसाजी डेरे, लक्ष्मी डेरे, चंद्र भागाबाई डेरे और समस्त डेरे पर को पसंद किया है। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है हसीना बी मंसूरी, आमना बी मंसूरी और बबलू मंसूरी के पालदा नाका इंदौर से। और ये ख़त है लिखने वाले हैं आशा रेडियो श्रोता संघ, पसंद किया है। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है हसीना बी मंसूरी, आमना बी मंसूरी और बबलू मंसूरी के पालदा, ये ख़त है लिखने वाले हैं आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गायकवाड़ राही, वैशाली, शैलेश गायकवाड़ और कुमारी ध्वनि गायकवाड़ ने पसंद किया है। सुनते हैं ये गीत।

जंगली, ये फिल्म का नाम है। इस फिल्म में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शंकर जय किशन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, सिंहपुर बड़ा से लिखने वाले हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। इसी गाने के लिए पसंद किया है महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या करिश्मा कामले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, स्वीटी बेबी प्रियांशी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और इसी गाने के लिए ये खत है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। गोवर्धन ज़िला वाशिम से लिखने वाले हैं रविंद्र पवार, मीना पवार, श्रीकांत, एकनाथ काले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत, फिल्म का नाम जकली।

0: मुझ पर।
1: अगला गाना लिया है हमने फिल्म सफर से, आवाज़ मन्ना डे की है, इंतीवर ने इस गाने को लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कवाई सालबुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता अभिषेक श्रीवास्तव और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है, छवड़ा राजस्थान से आसिफ अली।

कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कवाई सालबुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। छवड़ा राजस्थान से आसिफ अली।

अगला गाना हम आपको छोटे संसार का, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इसको पसंद करने के लिए हमारे पास में ये सादुल शहर राजस्थान से लिखने वाले हैं ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नोपुर, ऋषिका और रॉबिन की। और इसी खत, ये खत आया है तिवरता हबरी छत्तीसगढ़ से है, शायद ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है। लिखने वाले हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, तिवरता छत्तीसगढ़ से इन्होंने ये खत लिखा है। महेंद्र प्रताप मरकाम, जागेंद्र सिंह मरकाम, गजेंद्र सिंह मरकाम, जयंती मरकाम, ममता, मनीषा, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह, जुबाई, मानशी, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

समापन सत्र में शामिल से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के तात्याटोपे स्टेडियम में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित सेवा के रंग राष्ट्र के संग विशाल रंगोली कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव से शुरू हुए सेवा संकल्प वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हरदा जिले के प्रवास पर रहेंगे। वे जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्यमी संवाद, यशस्वी संवाद, अग्रणी कृषि संवाद और आम जनों से संवाद करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज विश्व सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जनसेवा है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वे मोटर दुर्घटना दावों से डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्तों के अंदर आपस में जोड़ें ताकि फर्जी इंश्योरेंस क्लेम पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। और इंदौर के होलकर स्टेडियम में 11 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा। वहीं दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला आज शाम 7 बजे से रांची में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। डीटीएच के ऑडियो चैनल मीडियम वेव और वेब्स ओटीटी पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। और अब हम आपको बता दें आज की आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी रोज की तरह 5:02 वाणी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगी। 5:33 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। क्षेत्रीय समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 5:40 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:00 और 6:30 पर फिल्म संगीत। किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा 7:21 पर होगा। विशेष कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 8:00 जनसेवा से देश सेवा, ये विषय होगा। 8:35 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। 9:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेल जगत, इसमें आप सुनेंगे वार्ता एशियन गेम्स में भारत की उपलब्धियां और खिलाड़ियों का प्रदर्शन। वार्ताकार है नवेद इशरत। 9:45 यानी 9:45 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत और आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा 10:00 और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे विदुषी शुभा मुद्गल का गाया ख्याल गायन, राग होगा बिहार। ये थे आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का कार्यक्रम। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:02 होने को हैं। अब हमारा मीडिया वेव पर प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5:02 पर आप हमारा मीडिया वेव का प्रसारण पुनः सुन सकते हैं। इस बीच डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं यौवाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी रेडियो दोस्त मार्गेशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, आज है शुक्रवार और शुक्रवार यानी कि वीकेंड की दस्तक। कई लोगों के लिए तो वीकेंड आज से शुरू हो जाता है और कई लोगों के लिए कल से शुरू होता है, लेकिन पूरे हफ्ते काम करने के बाद या पढ़ाई करने के बाद ये वीकेंड जो है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी बूस्ट करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। इस वीकेंड अपने खुद के लिए समय जरूर निकालिएगा दोस्तों, कुछ ऐसा काम कीजिएगा जो आपको करना पसंद है। और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी अपने शरीर, अपने मन और दिमाग, इन तीनों को आराम देना बिल्कुल मत भूलिएगा। हफ्ते भर काम करने के बाद ये थोड़ा सा स्लो डाउन होना ना, हम सब डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज विश्व भर में एक बहुत ही खास दिवस मनाया जाता है। अब वो दिवस कौन सा है ये आपको कार्यक्रम में पता चलेगा ही, लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले, जैसा आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न पूछते हैं और इन दोनों प्रश्नों के सही उत्तर आपको कार्यक्रम के अंत में बताते हैं। तो इसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न है कि भारत का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थित है, और दूसरा प्रश्न है कि भारत में नील क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इन दोनों प्रश्नों के सही उत्तर कार्यक्रम के अंत तक ढूंढ के रखेंगे। इसी के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये गीत और गीत के उस पार जानेंगे कि आज का दिन खास आखिर है क्यों।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: एक समय था जब किसी दूर बैठे अपने का हाल जानने के लिए चिट्ठी का इंतजार करना पड़ता था। डाकिया गांव की गली में दिखाई देता तो लोगों की नजरें उसके हाथ में मौजूद थैले पर टिक जाती थी। किसी के लिए वो नौकरी का पत्र लाता था तो किसी के लिए परीक्षा का नतीजा, किसी के लिए मनी ऑर्डर या किसी के लिए घर से आई चिट्ठी। समय बदला, काल बदला, नए नए आविष्कार हुए, संदेश भेजने की प्रक्रिया और भी आसान और सुलभ हो गई। लेकिन आज भी हम सभी को चिट्ठी और उस चिट्ठी को लाने वाले डाकिये की याद जरूर आती है। और इसी के चलते आज एक बहुत ही विशेष दिवस मनाया जाता है दोस्तों। हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इसकी वजह वर्ष 1874 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी UPU की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य अलग अलग देशों की डाक सेवाओं के बीच सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय डाक व्यवस्था को बेहतर बनाना था। अलग अलग देशों में डाक भेजने के नियम और व्यवस्थाएं अलग होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्र भेजना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और ऐसे में देशों के बीच एक साझा व्यवस्था की बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत महसूस हुई। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं के बीच सहयोग का रास्ता और भी मजबूत किया और बाद में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन का उद्देश्य डाक सेवाओं की भूमिका और दुनिया को जोड़ने में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है। दोस्तों, सालों तक डाकघर ने और चिट्ठियों ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने का काम किया है। भले ही आज हमारे पास अलग अलग सुविधाएं हैं, लेकिन हजारों साल तक इन चिट्ठियों ने दुनिया को एक तार में पिरोकर रखा। जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद डाक व्यवस्था का विस्तार देश के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों तक किया गया। डाकघर केवल चिट्ठियां पहुंचाने की वजह नहीं रहे, बल्कि लोगों के लिए बचत, बीमा और कई दूसरी सेवाओं से जुड़ने का माध्यम भी बने। डाकघर और चिट्ठियां लोगों का विश्वास का केंद्र बना और महत्वपूर्ण दस्तावेज भेजते समय आज भी लोगों का विश्वास डाकघर पर उतना ही है। आज भी दोस्तों, जब हम एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिल को और भी ज्यादा छू जाता है। और शायद इसीलिए पोस्ट ऑफिस सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि हमारे इमोशंस का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे। दोस्तों, जैसे आजकल देखा जाए तो ट्रेंड का भी जमाना है, तो जैसे हम एक ट्रेंड और शुरू कर सकते हैं कि क्यों ना अपने को चिट्ठी लिखी जाए कम से कम एक बार। हो सकता है कि ये भी आपको एक नया एक्सपीरियंस, कुछ नया सिखा जाए। डिजिटल संदेश को पढ़कर कुछ ही सेकंड्स में आगे बढ़ जाना बड़ा ही आसान है, लेकिन एक पुरानी चिट्ठी वर्षों बाद भी संभाल कर रखी जा सकती है। यही वजह है कि डाक का इस्तेमाल केवल तकनीक और व्यवस्था की कहानी नहीं है, ये इंसानों के बीच दूरी कम करने और भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने की कहानी भी है। दूतों से शुरू हुआ ये सफर घोड़ा, डाक, डाकिया, रेल, हवाई डाक, स्पीड पोस्ट, ईमेल और मोबाइल मैसेजिंग तक पहुंच चुका है। तकनीक बदलती रही लेकिन किसी तक अपना संदेश पहुंचाने की इंसानी जरूरत आज भी वही है दोस्तों। तो आप सभी को

विश्व डाक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी विषय पर अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पोस्टमास्टर जनरल जो इंदौर संभाग की गौरव श्रीवास्तव जी हैं, उनसे आकाशवाणी इंदौर के वरिष्ठ उद्घोषक मुकाम सिंह चौहान की हुई ये बातचीत।

0: मैं मुकाम सिंह चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, हमारे सभी युवा साथियों का और हमारे सभी सुनने वालों का। और आप सभी को विश्व डाक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस विशेष अवसर पर आज हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं गौरव श्रीवास्तव साहब, आप पोस्ट मास्टर जनरल इंदौर परिक्षेत्र हैं, और अजय बाफना साहब हैं वरिष्ठ पोस्ट मास्टर हैं इंदौर जीपीओ से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, और सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद धन्यवाद मुकाम जी
0: जी। और आप देख ही रहे होंगे कि हमारे पास में पत्रों का अंबार लगा हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर

वो निश्चित रूप से जो जिसको पत्र प्राप्त होता है, मुझे तो ऐसा महसूस होता कि वही फीलिंग उनको भी जो जो पत्र प्राप्त करते हैं उनको होती है। और फिर उसके बाद जब कार्यक्रम आगे बढ़ता है, उन फरमाइशों को जब पूरा किया जाता है आकाशवाणी के माध्यम से, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा कि उनका उनकी फरमाइश पूरी हो रही है। और डाक विभाग के बिहाफ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें भी

0: पूरे सप्ताह आप क्या क्या करने वाले हैं?
1: देखिए, आज तो चूंकि विश्व डाक दिवस है और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि हम इस पूरे हफ्ते को भारतीय राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाते हैं
0: जी, जी।
1: तो उसी कड़ी में आज चूंकि प्रथम दिन है तो आज के दिन पूरे भारतवर्ष में डाक विभाग की तरफ से बधाई संदेश दिए जा रहे हैं और लोगों से जुड़ने का कार्यक्रम है और इसी क्रम में मैं आपके सामने मुखातिब हूँ और जगह जगह जो हमारे अधिकारीगण हैं

0: डाक टिकटों का जो एक व्यापक संसार है
1: जी
0: उसको समर्पित है 12 तारीख। उस दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, स्कूली बच्चों को जो डाक टिकट की जो दुनिया है उससे उनका परिचय कराया जाएगा। उस दिन हम एक डिजिटल डिटॉक्स करके भी एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आज के जैसे डिजिटल दुनिया में लोग ईमेल का और बाकी जो दूरसंचार के माध्यम उनका ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो उस दिन हम ये है कि बैक टू बेसिक्स, आप आइए, आप पत्र लिखिए अपने प्रियजनों को, अपने बाकी दोस्तों को, और एक एक एक, एक तरह का डिटॉक्स है, एक आपको एक सुख मिलेगा।
1: बिल्कुल,
0: तो ये कार्यक्रम हम 12 तारीख को करेंगे।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुखद अनुभूति होती है जब आप खुद लिखते हैं और आपकी जो लिखावट भरा पत्र जब किसी के पास जाता है और वो पढ़ता है, तो उसको जो आनंद आता है वो तो अद्भुत है
0: जी।
1: वो किसी SMS या किसी ईमेल या किसी व्हाट्सएप संदेश से नहीं हो सकता है।
0: मैं बल्कि आपको बताऊं कि जो युवा वर्ग है उसमें अभी भी लिखने की बहुत चाह है।
1: जी,
0: जैसे हम बहुत से पूरे साल भर में हम बहुत से डाक लेखन प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, उसमें बढ़ चढ़ करके युवा वर्ग और बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उनको देखना ही बहुत सुखद होता है कि वो आते हैं, अपने उनके जो उद्गार होते हैं, जो उनके देश के प्रति जो भावना होती है, माता पिता के प्रति जो भावना होती है, बड़ों के प्रति भावना होती है, वो जिस तरह से उसको लिखते हैं, हमें भी कई बार मौका मिला है उन पत्रों को पढ़ने का, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक सुखद अनुभूति देता है
1: जी। श्रीवास्तव साहब, चूंकि फिलाटेली ये डे की बात कर रहे हैं हम लोग
0: जी,
1: जो बता रहे हैं कि 12 अक्टूबर को है, तो डाक टिकट की प्रदर्शनी भी आपके GPO में लगी हुई है?
0: डाक टिकट की प्रदर्शनी हम प्रदर्शनी हमारा जो है वो जो दिल्ली में जो हमारा डाक संग्रहालय है वहाँ पे भी आयोजित हो रहा है, और जगह जगह जो हमारे मेन पोस्ट ऑफिसेज हैं, जो हमारे प्रधान डाकघर हैं, वहाँ पे भी हम प्रदर्शनी का यथासंभव आयोजन करने की कोशिशें कर रहे हैं
1: जी, जी।
0: और हमारे यहाँ जैसे इंदौर है, इंदौर में हमारा फिलेटली ब्यूरो है
1: जी, जी।
0: तो ब्यूरो में भी आकर के मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि इंदौर GPO में आकर के आप जो डाक टिकटों का संसार है उसको आप देख सकते हैं।
1: और अगर कोई डाक टिकट के माध्यम से अपना संदेश छपवाना चाहता तो वो क्या करें?
0: डाक टिकटों के माध्यम से अगर आप चाहते हैं तो जैसे जो हमारे फिलेटलिस्ट्स हैं
1: जी, जी।
0: तो वो उनके पास एक संकलन होता है, तो जब जब भी कोई प्रदर्शनी आयोजित होती है तो जिसके पास भी एक संग्रह है, संकलन है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, तो उनके पूरे संग्रह को हम वहाँ दिखा सकते हैं
1: जी।
0: उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि बहुत से लोग हैं जिनके पास भारत की जो विकास यात्रा है उसके ऊपर उनके पास हजारों हजार की संख्या में उनके पास डाक टिकट हैं, तो वो उस डाक टिकट के थ्रू जो हमारी जो एक विकास यात्रा है उसको दिखा सकते हैं। और इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं, लोगों को आमंत्रित भी करते हैं कि वो अपने संग्रह को वहाँ पे उसका प्रदर्शन करें
1: जी जी जी
0: जी।
1: तो आप सप्ताह भर की गतिविधियों के बारे में बता रहे हैं, तो 13 अक्टूबर को क्या होने वाला है?
0: जी, तो इसी कड़ी में 13 अक्टूबर को देखिए डाक विभाग का जो कार्य क्षेत्र है बहुत बृहद है, तो जैसे हम अगर 12 तारीख को हमारा फिलेटली का दिवस है तो 13 तारीख को हमारा वित्तीय समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवाओं के ऊपर ये दिवस समर्पित रहेगा। तो वित्तीय समावेशन, जैसे कि सभी को पता है कि डाक विभाग में हम बचत सेवाओं का भी संचालन करते हैं
1: जी।
0: बहुत सी बचत सेवाएं हैं जिसमें मासिक आय योजना है, आवर्ती जमा योजना है, बचत योजना है, इसके अलावा राष्ट्रीय किसान पत्र हैं, तमाम सुविधाएं हैं जो कि हम डाक विभाग की तरफ से देते हैं। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना का हम संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए हमारे पास बहुत ही लाभप्रद योजनाएं हमारे पास हैं। और अभी विगत 3 या 4 दिवस पहले दैनिक भास्कर में जो हमारे वृद्ध लोग

0: जरूर जाइए और आवाओं का फायदा उठाइए। और हमारे साथ में हैं अजय बाफना साहब, तो आप बधाई संदेश हमारे श्रोताओं को दे सकते हैं।
1: नमस्कार मुकाम जी, मैं विश्व डाक सप्ताह पर पूरे डाक विभाग के परिवार की ओर से आप सभी श्रोता वर्ग को शुभकामनाएं देता हूं। डाक विभाग आपके लिए हर एक सेवा के लिए उपलब्ध है, चाहे आप बचत सेवा लें, चाहे पत्र भेजें, या आपको आधार बनवाना हो, या आपको गंगाजल प्राप्त करना हो, आप डाक टिकट का संग्रह करना चाहते हो, या किसी अन्य प्रकार की योजना में कोई जानकारी चाहते हो, तो हमारा सेंट्रल सर्विस सेंटर के माध्यम से उसकी भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो आप सभी को डाक विभाग की पूर्ण शुभकामनाओं के साथ डाक विभाग की सेवाओं का निरंतर लाभ लेते रहें, यही अनुरोध है
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों विशेषज्ञों को। और अब मैं मुकाम सिंह चौहान इस कार्यक्रम से अनुमति लेता हूं और कहता हूं नमस्कार।
1: नमस्कार।

तो दोस्तों, ये था आज का युववाणी कार्यक्रम, जो केंद्रित था विश्व डाक दिवस पर। हमने जाना कि डाक आज भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, डाक घरों ने कैसे हमारे देश के विकास में भी बहुत बड़ा किरदार निभाया है और कैसे देश के कोने कोने को एक साथ जोड़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रिकॉर्डिंग और ये बातचीत आपको काम जरूर आएगी। अब जाते जाते, जैसे हमने सामान्य ज्ञान के कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे दो प्रश्न पूछे थे, अब समय आ गया है उन दोनों प्रश्नों के आपको सही उत्तर बताने का। पहला प्रश्न था कि भारत का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ। सही उत्तर है डल लेक श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर में है। और दूसरा प्रश्न था कि भारत में नील क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है। इसका सही उत्तर है फिश प्रोडक्शन यानी मछली उत्पादन या मत्स्य पालन, इन दोनों से जुड़ा हुआ नील क्रांति भारत में लाई गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। और हाँ, आपकी डाक से रिलेटेड या पोस्ट से रिलेटेड क्या क्या मेमोरीज है, इसको कभी याद कीजिए। और हाँ, किसी अपने को चिट्ठी जरूर लिखिएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको जिंदगी भर हमेशा याद रहेगा। तो इसी के साथ अब दीजिए मार्गशा को इजाजत, रखिए अपना और अपनों का खूब ख्याल। नमस्कार।

0: इसको अरुणिमा सिन्हा के संघर्ष से सफलता की कहानी सुनकर वास्तव में बहुत प्रेरणा मिली
1: जी।
0: उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति यह सिखाती है कि निरंतर प्रयास और मजबूत संकल्प के सामने कोई भी शारीरिक बाधा सफलता की राह नहीं रोक सकती। साथ ही लुका छिपी कार्यक्रम ने बचपन की खूबसूरत यादें ताजा कर दी। आपका कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद भी है। आपकी कड़ी मेहनत और शानदार प्रस्तुति को दिल से सलाम।
1: जी आपने आगे लिखा है दिनांक 10 सितंबर 2026 को कार्यक्रम उमंग के अंतर्गत भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन एवं उपलब्धियों की जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक रही। वहीं माउंटेन मैन दशरथ मांझी के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक कहानी ने हमें सिखाया कि कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। आपका ये कार्यक्रम भारत की विविधता में एकता और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से परिचित कराता है, जिसका मुझे अपने परिवार के साथ बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद एवं हार्दिक आभार।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार।

0: आपसे भी एक प्रश्न, और वो प्रश्न ये है कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी।
1: ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए यह सम्मान मिला था
0: जी।
1: तो अब एक प्रश्न मेरी ओर से, क्या यह पुरस्कार केवल कविता के लिए दिया जाता है?
0: नहीं अजीत जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य साहित्यिक रचनाएं भी शामिल होती हैं।
1: श्रोता, आपकी जिज्ञासा तो जरूर बढ़ रही होगी कि इस पुरस्कार में मिलता क्या है। तो आपको हम बता दें, इस पुरस्कार के साथ साथ प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की प्रतिमा और नकद राशि भी दी जाती है।
0: आपने कहा वाग्देवी की प्रतिमा, यानी
1: को ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी माना जाता है
0: जी।
1: इसीलिए साहित्य के सर्वोच्च सम्मानों में वाग्देवी की प्रतिमा का होना तो बहुत ही अर्थपूर्ण है।
0: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ, पहला पुरस्कार किसे मिला और इसका साहित्य में क्या महत्व है।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात श्रोताओं, भारत की विविध भाषाएं हमारी सांस्कृतिक शक्ति हैं। हिंदी हो या बांग्ला, तमिल हो या मलयालम,

0: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
1: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए